部门的记录性来推进复兴。如今成果已经是显现，例如更广更强健的财务状况，国产技术在分享，印度国营电信有限。

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण कर

करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

डीसीनी सीआरएन लोअर नगरी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सलामत पागी सौडरा सौडरा पंडंगार कापडा परा पंडंगार कामी डीमाना साजा बरडा बरसामा साया ज्योति स्वरूप शर्मा कामी बरहराप सुहासाना का बरसामा आन डान का भाग्यान ईद उल अधा यांग बारू साजा दिराय कान तत्ताप मंबावा का डामायान डान का बरकाहान बागी सलुरू मशारकात इंडोनेशिया सियारान कामी डापा तंडाई कुत्ती सत्या फारी मलालुरिया ग्लोम्बांग लिमबला त्रिबू डोरातुस अनाम्पलू क्लोहर्च

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को

0: कर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: घुसपैठ

0: will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. India took a 1-0 lead after beating England comfortably by 38 runs in the first of a three-match T20 International Cricket Series at County Cricket Ground, Chelmsford. After losing the toss, India made 188 runs for 7 wickets in their stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Sunil. The resignation of Siddaramaiah as Karnataka Chief Minister is the top news in many dailies. Siddaramaiah makes way for D.K. Shivakumar in Karnataka leadership shift, headlines Hindustan Times. Amid suspense on whether Chinese President Xi Jinping will attend the BRICS summit in India in September, the two nations held constructive talks on the LAC and border row, writes the Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death Blow to Online Gaming, the Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the Earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi World Life Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important Qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Neetika Tyagi. Pehle is waqt ki khas khas khabrein. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلیٰ سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلیٰ سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔
3: اس پیٹے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے۔ ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगी बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेज़बानी रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। BJP ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरिकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा BJP की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब BJP का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के BJP सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नवीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वज़रा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। BJP के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
4: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी मार्ग मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरतेहाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरतेहाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। CBI ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
5: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल CBI की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
6: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अज़हा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। NTA ने बताया कि इतवार के रोज़ होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में

0: आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा द्वारा गिटार पर बजाया राग, राग चारुकेशी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे कृष्ण शर्मा द्वारा गिटार पर बजाए राग राग चारुकेशी का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। आलेख गौरव कांत शर्मा और स्वर कमल किशोर बड़ाएक।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक आजादी का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना भी देखा जो आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उनके विचारों में स्वरोजगार और खेती का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, इसलिए देश के विकास का आधार भी गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही होना चाहिए। स्वरोजगार के विचार में गांधी जी का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक था। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के बल पर अपनी आजीविका कमाए। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत भारतीय संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन और उपभोग करने पर बल दिया गया। चरखा और खादी गांधी जी के लिए केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका विश्वास था कि यदि गांवों में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मसम्मान देता है और उसे दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करता है। खेती के विषय में गांधी जी के विचार और भी गहरे थे। उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना। उनके अनुसार किसान न केवल अन्नदाता हैं, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी हैं। गांधी जी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती के समर्थक थे। वे रासायनिक खादों और अत्यधिक मशीनों के प्रयोग के विरोधी थे, क्योंकि इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा

0: प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम हो। गांधी जी ने स्वरोजगार और खेती को एक दूसरे का पूरक माना। उनका विचार था कि खेती के साथ साथ यदि ग्रामोद्योग जैसे हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, बुनाई आदि को बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे शहरों की ओर पलायन कम होगा और समाज में संतुलित विकास भी संभव हो सकेगा। ये व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगी बल्कि सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी। आज के आधुनिक युग में भी गांधी जी के ये विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा कहीं ना कहीं गांधी जी के सिद्धांतों से ही प्रेरित है। आज जब बेरोजगारी और पर्यावरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब स्वरोजगार और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि हम गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो एक सशक्त, संतुलित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है और वहां के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी का सिद्धांत दिया, अपने ही संसाधनों से उत्पादन और उपभोग, कुटीर उद्योगों का समर्थन। चरखा और खादी उनके लिए प्रतीक थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई काम स्वयं करे। स्वरोजगार को उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने का सबसे प्रभावी उपाय माना। उनका मानना था कि खुद के श्रम से कमाई गई आजीविका सबसे सम्मानजनक होती है। उनका प्रसिद्ध विचार था, भारत का भविष्य उसके गांवों में बसता है। गांधी जी के अनुसार खेती केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। वे रासायनिक खादों के बजाय प्राकृतिक तरीकों के पक्षधर थे। उनका सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, अपना भोजन, कपड़ा और आवश्यक वस्तुएं स्वयं पैदा करे। उन्होंने किसान को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना। गांधी जी ने स्वरोजगार और खेती दोनों को एक दूसरे से जोड़ा। खेती के साथ ग्रामोद्योग यानी विलेज इंडस्ट्रीज जैसे हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, बुनाई आदि, इसे गांव में स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। शहरों की ओर पलायन कम होता है, समाज में संतुलित विकास होता है। आज भी गांधी जी के ये विचार बेहद प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा उसी सोच से प्रेरित है। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर स्वरोजगार का आधुनिक रूप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल उत्पादों की मांग बढ़ रही है। गांधी जी के अनुसार स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, खेती समाज को स्थिर और समृद्ध बनाती है। दोनों मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जहां हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और देश आर्थिक और नैतिक रूप से मजबूत बन सके। इसीलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार स्वरोजगार और खेती केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को सम्मान, स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाले आधार स्तंभ हैं। उनके विचार आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की प्रेरणा देते हैं।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। आलेख गौरव कांत शर्मा और स्वर कमल किशोर बड़ाई।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। तो आइए सुनते हैं ये पंजाबी कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु

दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए

उन्हीं कदमों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। शायद जरूरत है बस थोड़ा सा ठहरने की और एक छोटा सा कदम उठाने की उनकी ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर हमारा कार्यक्रम घर आंगन, और आज है शुक्रवार, यानी ये है वो खास दिन जो हमने पूरी तरह समर्पित किया है हमारे बुजुर्गों को। जी हाँ, आज का कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही दोस्तों, आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर पर। और आज आपके साथ इस सफर की हम सफर हूं मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज।

फिल्म दो रास्ते में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और देखिए, दिल ने दिल को पुकारा तो मुलाकात तो होनी लाजमी है, और ये मुलाकात आपके साथ हमारी हो रही है। कहाँ? जी हाँ, कार्यक्रम जो शुक्रवार को हम विशेष तौर पर अपने बुज़ुर्गों को समर्पित करते हैं, तो ये कार्यक्रम है एक कदम बुज़ुर्गों की ओर। और देखिए, हम आपके साथ में हर दिन बहुत एक बेशकीमती बात आपके साथ साझा करते हैं। किस बारे में? जी हाँ, हमारी संस्था आकाशवाणी के बारे में। इस वर्ष ना आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। 9 दशकों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने केवल समाचार, संगीत और कार्यक्रम ही नहीं दिए, बल्कि भाषा, उच्चारण और संवाद की एक समृद्ध संस्कृति भी विकसित की है। आकाशवाणी को लंबे समय से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की शुद्ध उच्चारण और संतुलित प्रस्तुति के लिए एक आदर्श संस्था माना जाता रहा है। स्पष्टवाणी, संयमित शब्द चयन और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति इसकी विशेष पहचान रही है। एक समय था जब लोग शब्दों का सही उच्चारण सीखने के लिए आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम ध्यान से सुना करते थे। वैसे वो काम आज भी किया जाता है, है ना? और बोलने की शालीनता और भाषा की सादगी ने इसे श्रोताओं के मन में एक विशेष स्थान दिलाया है। आज जब संवाद के माध्यम तेज और अनौपचारिक होते जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे समय में आकाशवाणी हमें यह याद दिलाती है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदनशीलता का भी परिचय है। शब्द जब शुद्ध हो, स्वर जब संयमित हो, तो संवाद केवल सुना नहीं जाता, सम्मान के साथ स्वीकार भी किया जाता है ना?

0: आकाशवाणी एट 90।
1: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और देखिए, हम लोगों का आपके साथ जो रिश्ता है वो कायम होता है आपकी ईमेल के माध्यम से। और ईमेल आप हमें कहाँ भेजते हैं? जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। इंतज़ार है आपकी बातों का, आपकी राय का, आपकी शिकायतों का और आपकी प्यार भरी बातों का। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, है ना। कुछ लोग उम्र गिनते रहते हैं और कुछ लोग हर उम्र में जीना सीखते रहते हैं। सफ़ेद बालों के साथ भी जिनकी आंखों में चमक बची रहती है।

वही लोग सच में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। बढ़ती उम्र जीवन का अंत नहीं बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहां इंसान धीरे धीरे खुद के और करीब आने लगता है। जिम्मेदारियों की भागदौड़ थोड़ी कम होती है और मन छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना सीखता है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं दोस्तों जो इस उम्र में भी ना पूरे उत्साह के साथ जीवन जी रहे हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है बुजुर्गियत की, कि आप अपनी उम्र को स्वीकार करना सीखते हैं। आप जिस भी उम्र में हो अपनी उम्र को स्वीकार करें, गरिमा के साथ स्वीकार करें, क्योंकि आप इस जीवन को जी रहे हैं, है ना। और देखिए, हम बात करते हैं कि बहुत उत्साह के साथ हमारे बुजुर्ग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उनमें से कोई सुबह की सैर को अपनी आदत बनाए हुए है, तो कोई संगीत में मन लगाता है, कोई बागवानी में सुकून ढूंढता है, तो कोई नई तकनीक सीखकर दुनिया से जुड़ा हुआ है। कभी पुराने दोस्तों से बातें करते रहनी चाहिए, कभी अपने मन का कोई शौक फिर से शुरू करना चाहिए, या बस शाम की चाय के साथ डूबते सूरज को निहार लीजिए अपने जीवन साथी के साथ। ये छोटी छोटी बातें जीवन को फिर से ताज़ा कर देती हैं। आखिर उम्र तो कैलेंडर के पन्नों पर बढ़ती है ना, जीवन तो दिल से जिया जाता है। इसलिए उम्र को दराज में रखिए और मुस्कुराहट को अपने चेहरे से दूर मत जाने दीजिए, क्योंकि दिल जवान तो जिंदगी जवान, है ना।

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ शरद कुमार की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, उर्दू शायरी की दुनिया का एक उजला अध्याय कल स्मृतियों में दर्ज हो गया। मशहूर शायर पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र साहब के निधन से साहित्य जगत ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसने मोहब्बत, रिश्तों, तन्हाई और इंसानियत को बेहद सादगी और गहराई से शब्द दिए। उनकी शायरी की खासियत यह थी कि वे सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके अशार किताबों तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। बशीर बद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका एक बहुत मशहूर शेर भी याद आता है कि अजीब शख्स था, आंखों में ख्वाब छोड़ गया, वो मेरी मेज पे अपनी किताब छोड़ गया। बशीर बद्र साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके अल्फाज और उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका एक और गजल आपके सामने रख रही हूँ। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी। जहां जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बशीर बद्र साहब, आपको हमारी श्रद्धांजलि।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़े हैं और ये है हमारे साथ उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से जुड़े हैं, लिख रहे हैं, आपको मेरा दिल से नमस्कार सोनाली जी। आपको भी मेरा नमस्कार उग्रसेन जी। और लिखते हैं कि आपकी बातें इस उम्र भी में भी सीख देती हैं, और लिख रहे हैं कि इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में बहुत सारी अच्छे खराब अनुभव से परिपूर्ण है, पर जो जिस टाइम सीख मिले उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में स्वीकार्यता को लेकर चलेंगे, जो चीज़ जहाँ से मिली उसे ग्रहण करेंगे, तो ज़िंदगी में हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं बहुत उपयोगी जानकारी। आज ना दोस्तों, तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वरिष्ठ नागरिक भी डिजिटल सुविधाओं से आसानी से जुड़ सकें और उन्हें ज़रूरी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हों, है ना। और इसी दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 22 मई 2026 को जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। अब जीवन ऐप जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, आपातकालीन सहायता सेवाओं, वरिष्ठ नागरिक गृहों और अन्य ज़रूरी सुविधाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऐप जो है ना, ये वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल रूप में विकसित किया गया है। और आपको क्या करना है, इसका उपयोग करने के लिए आपको अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए आप इस ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो आवश्यक सेवाओं, योजनाओं और सहायता से जुड़ी जानकारी

इस ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो शतायु डैशबोर्ड है ना, वो बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े प्रशिक्षित केयर गिवर्स यानी सहायकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसके माध्यम से जो देखभाल सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी के बीच ये पहल तकनीकी और संवेदनशीलता को साथ लेकर चलने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है ना? आप भी इस बात को मानेंगे ना, क्योंकि बदलते समय में तकनीक केवल सुविधा नहीं, सहारा भी तो बन सकती है। तो आइए ना, आप सभी इस ऐप का और इस डैशबोर्ड का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, और जितनी हो सके उतनी सहायता आप इन तकनीकों के जरिए ले सकते हैं। और फिर क्या करना है, अच्छे अच्छे गाने भी सुनने हैं। कहाँ? FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

फिल्म कभी कभी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत प्यारा सा गीत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और बहुत सी शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण छोड़ जाती हैं, बहुत प्रेरक होती हैं और बहुत प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक शख्सियत है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन से साबित कर देते हैं कि प्रकृति से प्रेम केवल शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी शख्सियत हैं केरल के अलप्पुझा ज़िले की 92 वर्षीय कोलकायल देव की अम्मा, जिन्हें 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग उन्हें प्रेम से फॉरेस्ट ग्रैंडमा या पेड़ों की अम्मा भी कहते हैं। देव की अम्मा का जीवन किसी बड़े अभियान से नहीं दोस्तों, बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष से बदलना शुरू हुआ। लगभग ना 4 दशक पहले एक दुर्घटना में पैर घायल होने के बाद वे धान के खेतों में काम नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने अपने घर के आसपास पेड़ लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उनका यह प्रयास जो है ना, वो एक घने हरित क्षेत्र में बदल गया। आज लगभग 4.5 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैले उनके तपोवन में 3,000 से अधिक पेड़ और पौधे हैं, जिनमें कई दुर्लभ स्थानीय और औषधीय प्रजातियां भी शामिल हैं। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण, प्राकृतिक खाद और पारंपरिक तरीकों से इस पूरे वन क्षेत्र को विकसित किया है। देवकी अम्मा का ये जो जीवन है, यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और प्रकृति के प्रति प्रेम से भी संभव है। जिस उम्र में लोग विश्राम की बात करते हैं, उस उम्र में भी वे धरती को हरा भरा करने में लगी हैं। सचमुच कुछ लोग पेड़ नहीं लगाते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांसें बचा कर जाते हैं।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सुदर्शन मुखी, इनके साथ हैं अनीता मुखी और सिमरन मुखी, ये हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें गाने और बातें और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी सुविधा क्या है, बिना दर्द के चल पाना, चैन की नींद सो पाना और अपने लोगों के साथ हंसते हुए कुछ पल बिता पाना, है ना। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य केवल दवाइयों का विषय नहीं रह जाता, ये जीवन जीने के ढंग से जुड़ जाता है। समय पर उठना, थोड़ा टहल लेना, मनपसंद भोजन में भी संतुलन रखना और सबसे जरूरी मन को बेवजह की चिंता से दूर रखना। कई बार बुजुर्ग अपनी तकलीफें इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कभी ठीक नहीं होती। छोटी परेशानी हो या नियमित जांच तो उसे टालना नहीं चाहिए। एक और जरूरी बात, कभी भी अकेले ना रहें, अपने मित्रों से बात करें, पड़ोसियों से मिलना, बच्चों और नाती पोतों के साथ समय बिताना मन को हल्का रखता है। और ना एक चीज़ और बताएं, घर के ना काम करते रहिए, थोड़ा बहुत काम करने से ना मन भी लगा रहता है और शरीर भी हिलता डुलता रहता है। अपने मन का खाना बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। फिर एक और ना आपके साथ एक और ज़रूरी बात ये भी है कि अपने दिन की शुरुआत योग से कीजिए, अच्छे भजन सुनिए या फिर सुबह की सैर से करिए और बहुत छोटी छोटी आदतों से अपने आप को सक्रिय और खुश बनाए रखिए, क्योंकि आखिर जीवन की इस सांझ बेला में सबसे बड़ी बात केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ और सम्मान के साथ जीना है। क्योंकि जब स्वास्थ्य साथ होता है तो उम्र बढ़ने पर भी जीवन बोझ नहीं लगता, अपना लगता है। और हमेशा स्वस्थ रहने का एक और जो सबसे ज़रूरी माध्यम है वो है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी आपको यहाँ नज़र आएगी कहाँ पर, FM गोल्ड में। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

देखिए दिल तो आप हमारा ले लेते हैं अपनी बातों से। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं इदरीस सैफी जी, और वह कह रहे हैं कार्यक्रम हम भी सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहिए। और देखिए दोस्तों, ये जो गाना आप सुन रहे थे ये था मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, और गाया किसने था? किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। अगर हम बात करें कि एक समय था जब दादा दादी को मोबाइल चलाना बहुत मुश्किल लगता था, फोन केवल बात करने तक सीमित था और ऑनलाइन दुनिया उनसे काफ़ी दूर दिखाई देती थी। लेकिन समय के साथ अब तस्वीर बदल चुकी है। आज कई हमारे जो घर के हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल करना सीख रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं, पुरानी दोस्तों से जुड़े हुए हैं और अपने बच्चों पोते और पोतियों की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भजन सुनते हैं, पुराने गीत खोजते हैं, तो कई लोग अब ऑनलाइन योग और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी तो लेते हैं। और शुरुआत में ना उन्हें थोड़ी बहुत उलझन लगी, लेकिन जब परिवार धैर्य के साथ उन्हें सिखाता है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई बार ना जो हमारे नाती पोते होते हैं वो उनके सबसे अच्छे डिजिटल शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया से जुड़ते समय सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। अनजान लिंक, फ़ोन कॉल या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोगों का मार्गदर्शन इस मामले में बहुत मददगार हो सकता है। असल में तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह दूरियों को थोड़ा कम कर देती है। और सच कहें तो जब दादी पहली बार वीडियो कॉल पर मुस्कुराते हुए कहती है ना कि हाँ अब मुझे सब आ गया, तो केवल मोबाइल नहीं पूरे घर का मन खिल उठता है ना? और बस हमारा मन भी खिलता है आपके साथ बात करके। तो आइए सुनते हैं चलते चलते हमारे कार्यक्रम का ये एक और गाना।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का शुक्रवार का विशेष कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और अब मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: गली
1: हर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: That we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, कुछ फिल्में वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ फिल्में वक्त को ही अपने नाम कर लेती हैं। आज एक ऐसी ही मास्टरपीस की बात जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी। जी हां, आज बात नौकेतन फिल्म की अमरकृति गाइड की। आर के नारायण साहब द्वारा मशहूर उपन्यास एंटरटेनिंग द गाइड और उसे पर्दे पर उतारा कमाल के निर्देशक विजय आनंद जी ने। देवानंद साहब का वो अंदाज, वहीदा रहमान जी का वो ग्रेस और सचिन देव बर्मन यानी कि दादा का वो संगीत जिसे अभी आपने थोड़ा सा सुना, और इस फिल्म का हर एक कोना एक जादू है। आइए सीधे चलते हैं उस पहली मुलाकात की तरफ जहां राजू गाइड जिंदगी में रोजी आती है।

किसी कमाल आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

श्रोताओं, गाइड सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी बंधनों से आजादी की, कला की और इंसान के भीतर छिपे भगवान तक के सफर की। जब रोजी अपने घुंघरू बांधती तो वो सिर्फ नाचती नहीं, वो अपने समाज की बेड़ियों को तोड़ती है, और जब वो गाती है ना तो लगता है जैसे जिंदगी खुद झूम रही हो।

क्या बात है। श्रोताओं, इस गाने को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ और वहीदा जी का वो बेबाक डांस। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राजू अपनी बनाई दुनिया में खो जाता है। प्यार, धोखा, गलतफहमी और फिर जेल का सफ़र। फिल्म का दूसरा भाग हमें एक अलग ही दर्शन की ओर लेकर जाता है, जहां एक आम इंसान परिस्थितियों के चलते महात्मा बन जाता है।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो दर्द इस गाने में है वो सीधे दिल में उतर जाता है और छूता है दिल को। राजू का अकेलापन, उसकी तड़प, विजय आनंद ने इस फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस सूफिया और जिस अंदाज में पेश किया है वो आज के दौर के डायरेक्टर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है। मौत और आत्मा का वो संवाद, न सुख है न दुख है न दीन है न दुनिया, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ।

दोस्तों, अगर आपने आज के दौर की भागदौड़ में इस क्लासिक फिल्म को नहीं देखा या इसके गानों को तसल्ली से नहीं सुना तो आज की रात गाइड के नाम कर दीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी कुछ अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: हम अपने श्रोताओं को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे और आपको इस फिल्म के दो गीत ज़रूर सुनवाएंगे। और आइए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इसी कार्यक्रम को हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें हैं अजीत भावसार, प्रमिलाबेन भावसार, ऐसे ही और भी श्रोता हैं हमारे, संजय साहू, धर्मेंद्र चीपा, लाल गिरी, बबलेश पवार, प्रकाश वर्मा, स्वर्ण सिंह, सुरेश यादव, अमोल ठाडे, राजकुमार डूडी, देवनारायण साहू, संजय और अनिल मोहन, बिट्टू, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को इतने प्यार से सुन रहे हैं। और चलते चलते आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफ टॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकेन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरखास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। DD न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र गलती से पाक इम्तिहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तिहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मील तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब PM सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नस्ब किए जाने वाले शमसी तवानाई के निज़ाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज्यादा इस यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई का खर्च करने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुनबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडीज से फ़ायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह ख़त्म कर सकेंगे। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई की यकीनी फराहमी माहौलियाती इस्तेहकाम और खुद कफील विकसित भारत के तसव्वुर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अलाक़वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरमी नाला और क्रीक इलाके का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सामने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इसलाहत और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कृष्णा जिले में मल्लावली सनती पार्क में मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक

30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सनद तेजी से वसत पा रही है और उन्होंने भारतीय दस्तकारों को वसी आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि पैदावार से वाबस्ता तरगीबात की स्कीम पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही है और भारतीय ब्रांड्स को फरोग दे रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब कर रही है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत और सनत के 50 से ज्यादा सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसुलेट जनरल और भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की इस्लाहात पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तई भारत के अज़म को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अक़वामे मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्द ख़वातीन फ़ौजियों की सताइश की जो आलमी सतह पर अमन व सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमा आईएमडी ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिन की पेशगोई करते हुए आईएमडी ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरानुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर्स मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर्स के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर्स की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज़ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना करेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: से सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका।

स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है।
दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली

0: यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं

आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जो पर्दे पर आता है तो खुद गायब हो जाता है और सिर्फ उसका किरदार जिंदा रहता है। एक ऐसा एक्टर जिसे देखकर नई पीढ़ी अभिनय सीखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के उस नायाब कलाकार की जिसे दुनिया पंकज कपूर के नाम से जानती है। यही नहीं, चाहे वो दूरदर्शन के ज़माने में गाजर चबाने वाला जासूस करमचंद हो या फिर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटता लाचार मुसद्दीलाल, उन्हें हर रंग को ऐसे जिया है, वो किरदार अमर हो गए हैं। आज के इस सफ़र में हम उनकी थिएटर लाइफ, आइकॉनिक टीवी शोज और सिनेमा के उन किरदारों की बात करेंगे जिसने उन्हें एक्टर्स का एक्टर बनाया। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं उनके एक शानदार सिनेमाई सफ़र के दौर के इस खूबसूरत गीत के साथ।

क्या बात है श्रोताओं, कितना खूबसूरत गीत था ये। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। पंकज कपूर साहब का जो जन्म है वो पंजाब के लुधियाना में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते दिल थिएटर की तरफ धड़कने लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे और वहां से जो निखर कर निकले तो कमाल ही कर दिया। श्रोताओं, क्या आपको याद है साल 1985 जब भारत में रंगीन टेलीविजन नया नया आया था? उस दौर में एक जासूस आया जो अपनी जेब में गाजर रखकर चलता था। बात बात पर अपनी असिस्टेंट किटी से कहता था, शट अप किटी। जी हां, करमचंद। पंकज जी ने उस जासूस को इतना देसी और इतना दिलचस्प बना दिया कि बच्चे बूढ़े सब उसके दीवाने हो गए। उस दौर में लोग टीवी के सामने से हिलते नहीं थे। तो आइए पंकज कपूर के इसी कमाल के अंदाज को याद करते हुए सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा।

कार्यक्रम एक एक कलाकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बहुमुखी कलाकार पंकज कपूर साहब की। दोस्तों, टीवी पर नाम कमाने के साथ साथ पंकज कपूर जी ने समानांतर सिनेमा का एक मजबूत स्तंभ बनाया। फिल्म जाने भी दो यारो, इसका वो भ्रष्ट कोयला माफिया तरनेजा आपको याद ही होगा। साल 2003 में जब विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर फिल्म बनाई, जी हाँ, फिल्म का नाम था मकबूल, पंकज कपूर ने जहांगीर खान उर्फ अब्बा जी का किरदार इसमें प्ले किया और इस किरदार में उन्होंने जान फूंकी। उसे देखकर हॉलीवुड क्रिटिक्स भी दंग रह गए। उनकी वो झुकी हुई कमर, वो ठहरी हुई आंखें और वो आवाज़ बिना चिल्लाए भी पर्दे पर खौफ पैदा कर देते थे। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए इस फिल्म का एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। साल 2001 में टीवी शो आया ऑफिस ऑफिस। पंकज कपूर ने इसमें मुसद्दी लाल का किरदार निभाया, एक ऐसा आदमी जो रिटायरमेंट के बाद अपने ही पैसे के लिए, अपनी पेंशन के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चप्पलें घिसता है। पंकज जी ने इस किरदार में कॉमेडी और ट्रेजेडी का ऐसा अनूठा मिश्रण पेश किया कि मुसद्दी लाल हर घर के, या हम यूं कहें कि हर घर का हिस्सा बन गए। व्यंग किसे कहते हैं और बिना लाउड हुए कॉमेडी कैसे की जाती है, ये पंकज कपूर ने इस शो से साबित किया। पंकज कपूर साहब सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि वो एक बेहद

संवेदनशील लेखक और निर्देशक भी हैं। उनकी आवाज़ में जो ठहराव है, वो जब कविताएं पढ़ते हैं या मंच पर दुपहे जैसे सोलो प्ले करते हैं तो पूरा ऑडिटोरियम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनता है। उनकी विरासत को उनके बेटे शाहिद कपूर और बेटी सना कपूर भी आगे बढ़ा रही हैं। पंकज जी आज भी जब पर्दे पर आते हैं तो ये साबित कर देते हैं कि स्टारडम से कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक्टिंग की बादशाहत दम रहती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं पंकज कपूर जी की फिल्म का ही एक और सुकून भरा गीत।

दोस्तों, वक्त जो है वो पंख लगाकर उड़ जाता है जब हम बात करते हैं किसी ख़ास कलाकार की। आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने पंकज कपूर के फिल्मी सफ़र के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश की। करमचंद की गाजर से लेकर अब्बा जी के पान चबाने के अंदाज तक पंकज कपूर हमेशा हमारे दिल में एक बहुमुखी कलाकार के रूप में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी कार्यक्रम में एक नए कलाकार की कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए और अपने दोस्त मनोज को अनुमति दीजिए।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम

0: चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया।
0: गांव ढाणे कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत।
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।

0: संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि

0: कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

0: में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
3: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब

0: मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।

0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

हमें अभी आप पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था पयाम सईदी का। सामीन, हमारी सोच व फ़िक्र हमारी ज़ाहरी और बातनी शख्सियत पर गहरा असर डालती है। मसले तो सबके साथ होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि मसलों में मौक़े तलाश करें, मुस्बत उम्मीद रखें, मनफी सोचों से गुरेज करें। मुश्किल का हल गौर व खौज से निकलता है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। हमें अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान रखना चाहिए, जिससे दिल दिमाग सुकून से फैसले लेता है और मुश्किलात आसानी से हल हो जाती हैं। वफा की राह में ये तो ज़रूर होना था, वफा की राह में ये तो ज़रूर होना था, तेरी तलब में मुझे तुझसे दूर होना था। आइए सामेन, हरिहरन की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है नसीम शहर का।

सामीन, अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था साहिर भोपाली का। सामीन, बाअख्लाक होना और सच बोलना आला आदतें हैं जो शख्सियत साजी में नुमाया किरदार अदा करती हैं। अच्छे अखलाक का हर शख्स गिरविदा हो जाता है, लोग इज्जत और एहतराम करते हैं। बाअख्लाक शख्स दूसरों को इज्जत देता है, नरमी और मुलायमत से पेश आता है। इसी तरह सच बोलने वाला भी सबकी नज़रों में सुरखरू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच बोलने से वक्ती नुकसान हो जाता है, मगर ये खूबी वक़ार का बाइस बनती है, लोग एतमाद करते हैं। फिर आज मुझे तुमको बस इतना ही बताना है, फिर आज मुझे तुमको बस इतना ही बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। आइए सामीन, जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है सुदर्शन फ़ाकिर का।

सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था सुदर्शन फ़ाकिर का। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशारे गज़ल।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

听到这里广播电台，听众朋友们，我们现在报告新闻。最高法院指示所有高等法院需在保留裁决后三个月内

听着这里广播电台，听众朋友们，我们现在播送米珠米神米语言的民间歌曲，请收听。

印度这里广播电台，听众朋友们，我们现在播送庞乔普语言的民间歌曲，请收听。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी
2: अनु गुप्ता।
1: मैं और अनु आज आपको लेकर जाएंगे इस आधे घंटे में खेलों के उन सफरों पर जो आपको सुनने के लिए आप इच्छुक होते हैं। और हर शाम अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम लोग आते हैं आपको लाइव अपडेट देने के लिए, उन खेलों की जानकारी देने के लिए जो हो रहे होते हैं या फिर होने वाले होते हैं। तो मैं और अनु आज अपने इस कार्यक्रम में जिन जिन खेल गतिविधियों को शामिल करेंगे उनमें हम बात करेंगे क्रिकेट की, हम बात करेंगे
2: हॉकी,
1: इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वैश की, साथ ही साथ लेके चलेंगे आपको शूटिंग के ग्राउंड पर भी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे खबरें यहाँ पर आईपीएल से जुड़ी हुई, क्योंकि अनु सब ने अपनी जो धड़कन है उन्हें थाम रखा है, क्योंकि आईपीएल का जो चरण था वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में आज का होने वाला जो दूसरा क्वालिफायर है वो यहाँ पर ये तय कर देगा कि फाइनल में कौन सी टीम जाएगी। तो ये बहुत रोमांचक स्थिति है हमारे सभी श्रोताओं के लिए और उन दर्शकों के लिए जो इसको लाइव देखते हैं हमेशा टीवी पर।
2: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में जो होने वाला है आज का क्वालिफायर टू, वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए। और मुझे आशा है कि आज भी हमें कुछ बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी। कुछ नए खिलाड़ी जैसे हमारे साथ जुड़े हैं सूर्यवंशी जी को लेकर सभी की बहुत ज्यादा आशाएं जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं कि किस पलड़े ऊंट बैठता है।
1: बिल्कुल, तो जैसे इन्होंने सूर्यवंशी का नाम लिया, बिल्कुल वैभव जो है उस तरीके से अपना एक छाप छोड़ने के लिए तैयार है। और अगर आईपीएल में आज सूर्यवंशी का बल्ला बोला तो लगता है कि गुजरात को आज घर ही जाना पड़ेगा। वेल, सुनते हैं पूरी ही पूरी जानकारी, पूरी ही पूरी अपडेट आज के क्वालिफायर टू पर। इंडियन प्रीमियर

लीग 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज क्वालिफायर दो खेला जाएगा, जिसमें 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस और 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगी। ये बड़ा और अहम मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का विजेता आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगा। दोनों ही टीमें जानती हैं कि इस करो या मरो वाले मैच में फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। गुजरात टाइटंस को क्वालिफायर एक में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के हाथों 92 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जो इस सीजन का उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। जबकि राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर दो में पहुंची है। गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज राजस्थान के ओपनर वैभव सूर्यवंशी को रोकना होगा। वैभव ने एलिमिनेटर में हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसकी वजह से राजस्थान 243 रनों का बड़ा स्कोर करने में सफल हो गई थी। वैभव ने 243 के शानदार स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप पहन रखी है। साथ ही उन्होंने एक ही आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब उनके नाम 65 छक्के दर्ज हो चुके हैं। इसी वजह से वैभव गुजरात के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वैभव ने टूर्नामेंट की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी गुजरात के ही खिलाफ बनाई थी, इसलिए अगर वैभव का बल्ला इस मैच में भी चल गया तो गुजरात का सफर यहीं खत्म हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी भी गुजरात के लिए खतरा बन सकती है। सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने मिलकर 206 के स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए हैं, जिससे वो आईपीएल 2026 की सबसे सफल जोड़ी बन गए हैं। ध्रुव जुरेल के लिए ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन सीजन रहा है। उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से 508 रन बनाए हैं, जबकि कप्तान पराग ने पूरे सीजन में शांत और स्थिर नेतृत्व प्रदान किया है। वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर राजस्थान के सबसे घातक हथियार साबित हुए हैं। उन्होंने 14 के स्ट्राइक रेट से 24 विकेट लिए हैं, जिसमें पावर प्ले में लिए गए 14 विकेट भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के लिए गुजरात का टॉप ऑर्डर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये तीनों बल्लेबाज, खासकर इनकी ओपनिंग जोड़ी, शानदार फॉर्म में है। अगर ये दोनों रन बनाते हैं तो फिर गुजरात की जीत के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गेंदबाजी में भी मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा भी राजस्थान के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। गुजरात टाइटंस रिकॉर्ड में राजस्थान से आगे है। दोनों के बीच हुए अब तक 10 मैचों में गुजरात ने 7 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान केवल 3 मैच ही जीत पाया है। इसके अलावा गुजरात ने 2022 के क्वालिफायर एक में और फाइनल दोनों में राजस्थान को हराया था, लेकिन इस सीजन में मुकाबला बराबरी पर है। हालांकि इस मैच का वेन्यू पूरी तरह से आरआर के पक्ष में है। उन्होंने इस सीजन में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अपने सभी मैचों में जीत हासिल की है, जबकि गुजरात टाइटन यहां खेले गए 3 मैचों में से केवल एक ही जीत पाई है। अब आपको बताते हैं कि अगर क्वालिफायर दो में बारिश आई तो क्या होगा। अगर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच में बारिश आई तो नियमों के अनुसार मैच ऑफिशियल्स उसी दिन मैच को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। उस दिन मैच का परिणाम आए इसके लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाता है। दोनों पारियों में 5-5 ओवर का खेल भी नहीं हो पाता तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा। अगर क्वालिफायर दो मैच बिना कोई गेंद खेले रद्द हो जाता है तो वो टीम फाइनल में जाएगी जिसकी पोजीशन पॉइंट टेबल में बेहतर थी। इस आधार पर गुजरात टाइटंस को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो देखना होगा कि फाइनल का टिकट कौन लेता है और किसकी होती है घर वापसी।

पुरुषों की बात, अब बात महिला क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान को 38 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए T20 इंटरनेशनल मुकाबले में मेजबान को 38 रन से हरा दिया। इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रही युवा तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने

0: ओवर में 7 विकेट खोकर 188 रन बनाए। भारत की ओर से जैमिमा ने 40 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं यात्सिका भाटिया ने 40 गेंदों पर 54 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दीप्ति शर्मा ने 13 गेंदों में 22 रन की तेज पारी खेली। 189 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 150 रन ही बना पाई। इंग्लैंड की ओर से एमी जॉन्स ने 67 रन की जुझारू पारी खेली, जबकि हीथर नाइट ने 21 रन बनाए। भारत की तरफ से नंदिनी शर्मा के अलावा क्रांति गौड़ ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब दोनों के बीच दूसरा मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा। तो इस तरीके से भारतीय महिला टीम ने अपना जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज खेली उसमें जीत हासिल कर ली। और अब आपको क्रिकेट के ग्राउंड से हम निकाल के लिए चलते हैं शूटिंग रेंज में, जहां पर हमारी जो सहयोगी है अनु ने ताजा अपडेट जो है वो उस पर तैयार की है। तो क्या हुआ है आज शूटिंग रेंज में, आइए सुनते हैं।
1: जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर के लगभग 80 देशों के शीर्ष शूटर इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय टीम भी अनुभव और युवा प्रतिभा का शानदार मिश्रण लेकर उतरी है। सबसे पहले बात महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की, जहां भारत की युवा निशानेबाज साक्षी पडेकर ने अपने पहले ही सीनियर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। महाराष्ट्र की 22 वर्षीय साक्षी ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन 635.1 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। उनसे आगे केवल चीन की विश्व नंबर 1 वांग जिफेई और पेरिस ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की होजिन बान रही। फाइनल में साक्षी ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की और शुरुआती सीरीज में कई शानदार 10.7 और 10.8 के शॉट लगाए। शूट ऑफ में साक्षी ने 10.5 स्कोर किया, जबकि फ्रेंच खिलाड़ी ने 10.7 लगाकर बढ़त बना ली। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सर्बिया की युवा निशानेबाज स्टेवानोविक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 18 वर्षीय स्टेवानोविक ने फाइनल में कुल 252.3 अंक हासिल किए और बेहद करीबी मुकाबले में जापान की मिसाकी नोबाटा को पछाड़ते हुए गोल्ड जीता। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के ओलंपियन अनीश भानवाला ने पहले चरण के बाद मजबूत स्थिति बनाई हुई है। अनीश ने 290 का स्कोर करते हुए 19वां स्थान हासिल किया और फाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वहीं भारत के युवा निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने 288 का स्कोर किया, जबकि सीनियर स्तर पर पदार्पण कर रहे सूरज शर्मा ने 284 अंक हासिल किए। अब दूसरे चरण में भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी, जहां शीर्ष 8 में जगह बनाकर फाइनल में पहुंचना लक्ष्य होगा। वहीं यदि बात करें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मेन कैटेगरी की, तो उसमें कर्माकर एड्रियन 50वें स्थान पर रहे, रुद्राक्ष बालासाहब पाटिल 53वें स्थान पर रहे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ISSF नियमों के उल्लंघन के चलते प्रतिस्पर्धा से डिस्क्वालीफाई हो गए।

तो शूटिंग रेंज से अब आपको निकाल करके हम लिए चलते हैं एथलेटिक्स के ग्राउंड में, जहां पर एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन जो है वो खेली जा रही है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी लगातार अपना प्रदर्शन जो है उसको करके भारत का थोड़ा नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़े की नहीं, हम बहुत ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भारत के खिलाड़ी जब भी किसी इवेंट में खेलने के लिए जाएं तो हमेशा भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा जो है, उसकी शान रखें, उसे ऊपर उठाएं। तो चलिए बताते हैं आपको, 28 से लेकर 31 मई तक हांगकांग चीन में आयोजित हो रही एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। तो वहीं डेकेथलॉन के 8 इवेंट के बाद भारत के राहुल जाखड़ जो हैं, सारे ही इवेंट के बाद राहुल जाखड़ पहले पायदान पर रहे। और यहां पर एक और खुशखबरी एथलेटिक्स ग्राउंड से आई, तो वहीं महिलाओं की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और इससे पहले चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत को शानदार शुरुआत मिली, जब महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में निपाम ने 11.62 सेकंड का समय निकालते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के लिए पहला पदक जीत लिया।

0: इस चैंपियनशिप में भारत के 48 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 30 पुरुष और 18 महिला एथलीट शामिल हैं। फिलहाल भारत के खाते में अभी 8 स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जुड़ चुके हैं और रजत पदक और कांस्य पदक भी यहां हमारे आ चुके हैं, और आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों से और अच्छे उम्मीद की प्रदर्शन की उम्मीद है। जहां पर पिछली चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके 20 से ऊपर मेडल जो है वो अपने लिए अर्जित किए, तो यहाँ पर अनु हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो आंकड़ा जिसको पिछली बार हमारे एथलीट्स छू करके आए थे वो थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर बढ़ाएं, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे खिलाड़ी भी कि पिछले प्रदर्शन से हमेशा बेहतर प्रदर्शन करें।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप कविता, और बड़े अच्छे ही प्रदर्शन देखने को मिले हैं डिकैथलॉन की सभी 8 कॉम्पिटिशन्स में, और कुछ अच्छे पदक भी लेकर आए हैं भारत के खिलाड़ी। भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगी। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं।
0: अगली खबर आपके पास ही हम आएंगे वापस, क्योंकि अगली खबर जो है वो क्या है आप बताइए।
1: बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए हम अगली खबर लेकर आए हैं चेस के एरिना से, जहां पर कुछ बड़े बड़े नाम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बड़ी ही उलटफेर हो चुके हैं इस चेस के एरिना में। आइए जाने क्या उलटफेर हुए हैं।
2: चेस 2026 के चौथे राउंड की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ियों के लिए अंक तालिका में मिली जुली स्थितियां देखने को मिल रही हैं। पुरुष वर्ग में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए जर्मनी के विंसेंट कीमर को आर्मागेडन मुकाबले में मात दी, जिसके चलते वे 6 अंकों के साथ पूरी अंक तालिका में अकेले दूसरे स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। इसके विपरीत मौजूदा विश्व चैंपियन डी कुकेश के लिए ये राउंड बेहद कठिन साबित हुआ, जहां उन्हें घरेलू खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के हाथों क्लासिकल गेम में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बड़ी हार के कारण गुकेश अतिरिक्त अंक नहीं जुटा पाए और वे 3.5 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर खिसक गए हैं। महिला वर्ग की बात करें तो भारत की युवा सनसनी दिव्या देशमुख आर्मागेडन मुकाबले में अन्ना मुजीचुक के खिलाफ एक बड़ी चूक के कारण मैच हार गई, लेकिन शानदार शुरुआती प्रदर्शन की बदौलत वे अब भी 5.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर टिकी हुई है। वहीं भारत की सबसे अनुभवी महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का खराब दौर इस राउंड में भी जारी रहा, जहां जू जिनर से आर्मागेडन टाई ब्रेकर में हार गई। इस शिकस्त के बाद हम भी केवल 3 अंकों के साथ तालिका में छठे यानी सबसे अंतिम स्थान पर संघर्ष कर रही हैं। राउंड 5 के इन हाई प्रोफाइल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों के सामने कई बड़ी और दिलचस्प चुनौतियां होंगी, जहां सबसे खास बात यह है कि इस राउंड में भारत के ही धुरंधर खिलाड़ी आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। पुरुष वर्ग में जहां सफेद मोहरों के साथ खेल रहे आर प्रज्ञानंदा का सामना हमवतन डी गुकेश से होगा, वहीं महिला वर्ग में भी 2 भारतीय दिग्गज आमने सामने होंगी, जिसमें कोनेरू हम्पी को सफेद मोहरों से खेलते हुए दिव्या देशमुख के खिलाफ अपनी रणनीति

0: पर्यावरणविद के तौर पर
1: जल संचयन, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि कदम है, क्योंकि कुछ राज्यों में तो ऐसा किया जा रहा है, बट अभी भी ज़्यादातर राज्यों में किसान भाई को वो सुविधा नहीं दी जा रही है या वो नहीं उसका लाभ उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रहा है प्रभावी रूप से। और सोशल मीडिया का जिले के स्तर पे भी सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत प्रभावी से किया जाए। और पशुपालन में मैं ये कहूंगा कि जो हमारी सब्जियों में जो आज टेस्ट नहीं है, जब जैविक खेती होती थी तब में और आज में, आज हर एक सब्जी का या फल का टेस्ट बदल गया है, तो हमें वही चीज मिले तो उसके लिए जैविक खेती ही एकमात्र उपाय है। और जैविक खेती, जो भी गोबर आदि उत्पन्न होता है, वो वहीं की वहीं वर्मी कंपोस्टिंग करें, और उसी खाद से, एनपीके की जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की जो कमी है, वो उसी खाद से खेत की पूरी करें। यही मैं समझता हूँ कि मेरा एक संदेश हो सकता है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश है। और आखिरी संदेश की प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, सभी लोगों के लिए है, किसानों के साथ साथ। तो आकाश वशिष्ठ जी, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में जानकारी दी और बहुत सारी योजनाएं और कानून के बारे में हमें अवगत कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी, आकाश वशिष्ठ जी, जो कि पर्यावरणविद और एडवोकेट भी हैं उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में। इनसे बातचीत करी थी सुषमा शर्मा और विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित योजनाएं और उससे संबंधित कानून।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फते हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
9: जी,
8: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
9: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
8: पर ये होगा कैसे?
9: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है

0: तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और पिछले कार्यक्रम में अभी महत्वपूर्ण जानकारी आपने ली और कुछ और भी है पर्यावरण से जुड़ा हुआ।
5: बिल्कुल, जो कह रहे हैं ना कि जानकारी तो दी गई, लेकिन इसी जानकारी को हम मनोरंजन के रूप में भी अपनी श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भाइयों बहनों तक। तो सतेंद्र यादव पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं अपने इस उपदेश के जरिए, चलिए सुनते हैं।

0: राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 28 से 29 मई तक चला, जो कि आज तक चला। इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विचार रखे।
1: कृषि सम्मेलन चल रहा है, कल सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषि से संबंधित अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया था, जिसकी जानकारी मैंने कल आपको दी थी। आज राज्यों के कृषि मंत्री भी

0: इसमें सम्मिलित हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी टीम एग्रीकल्चर भारत की आज यहाँ सुब्रमण्यम हॉल में इकट्ठा है। राज्यों के कृषि मंत्री, भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, हमारे ICAR के वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के हमारे साथी, प्रगतिशील किसान, पूरी टीम।
1: और साथ ही साथ बात करें तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बीज को लेकर भी खास बात कही।
0: चीज होती है बीज, और बीज में चाहिए गुणवत्ता युक्त बीज। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए हमारे पास 173 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है, क्योंकि हमको जरूरत है 173 लाख क्विंटल की जरूरत है, और उपलब्ध है हमारे पास 192 लाख क्विंटल। तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। राज्यों की जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से राज्यों को बीज का आवंटन किया गया है, और राज्य समय पर बीज उठा ले और खरीफ के पहले किसानों तक बीज पहुंच जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। एक हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन अलिनो के कारण अगर देर से बारिश आई, बीच में कुछ गैप हो गया, तो उसकी तैयारी पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है।
1: और साथ ही साथ उन्होंने राज्यों से भी आग्रह किया कि खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक के लिए प्रेरित करें। उस संदर्भ में उन्होंने कहा,
0: विभिन्न योजनाओं के आरकेबीवाई और कृषि उन्नति की, वो पैसा समय पर कई बार खर्च नहीं होता। मैं अभी राज्यों के नाम नहीं बता रहा, लेकिन राज्यों से व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है कि समय पर खर्च करें ताकि योजना का लाभ ठीक समय पर किसानों को ढंग से मिल जाए, और बाद में आनंद फानंद में पैसा खर्च ना कर सके। एक सबने तय किया कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है, बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाए। लैब्स कई राज्यों में है, लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए, इस पर राज्यों ने बात की है, तो इस पर भी सभी राज्य मिलकर काम करेंगे। फिर ये हम आशा की खरीद में कई बार देर बहुत ज्यादा लगती है, 3 महीने का टाइम देने के बाद भी राज्य समय मांगते हैं, तो इस पर भी सहमति बनी है एक निश्चित समय सीमा में खरीद करने का काम किया जाए। ऐसे जितने महत्वपूर्ण विषय थे, KBK को मजबूत करने की जरूरत है, FPO के आंदोलन को और तेज गति से चलाने की जरूरत है, फसलों की वैरायटी के बारे में बात हुई, अरहर जैसी फसलों पे जो वैरायटी है वो लंबे समय में उत्पादन आता, 8-9 महीने लगते, 60 टन की वैरायटी आई है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। अलग अलग राज्यों में एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन सी वैरायटी ठीक काम करेगी, उस पर और बेहतर काम करने की जरूरत है। ऐसे अनेकों सुझाव राज्य के आए हैं, और हर एक राज्य ने यह सहमति व्यक्त की है, राज्यों का कृषि रोड मैप हम बनाएंगे। अभी कुछ राज्यों का कृषि रोड मैप हमारा लगभग तैयार हो गया है, आंध्र प्रदेश कुछ पर काम चल रहा है, और बाकी राज्यों के साथ भी मिलकर हमारे वैज्ञानिक और भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी हर एक राज्य का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे, ताकि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की आवश्यकता के हिसाब से कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी, कितना खाद, उस पर हम लोग काम कर सकें। और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी कि 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो, तो

0: कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें, एक चीज। दूसरे, प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान दें, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा होगी। लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी जो आंकड़े हमारे पास आए, प्राकृतिक खेती अभी हो रही है। 8 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया है, बाकी और की मैं बात नहीं करता, उस पर हमारा काम चल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। छोटी जोत के जो किसान है, रजिस्ट्रेशन 20 लाख किसान 20 लाख ने करवाया, एरिया 8 लाख हेक्टर है, 8 लाख हेक्टर एरिया है, तो उस पर भी ठीक दिशा में काम चल रहा है। आज हमने आग्रह किया है कि कम से कम कृषि मंत्री और राज्यों के बाकी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी, अगर उनके पास खेती की जमीन है तो कम से कम 1/4 हिस्से में तो प्राकृतिक खेती के प्रयोग खुद भी करें। हम थोड़ा करेंगे तो बाकी को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। और विकसित कृषि संकल्प अभियान राज्यों पे छोड़ा है।
1: राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 28 से 29 मई तक चला। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विचार रखे। ये जो आपको सुनाया गया ये वहाँ का सजीव प्रसारण था और इसमें स्थल रिकॉर्डिंग से संबंधित ही सारी रिकॉर्डिंग हमारे आप तक पहुँचाया हमने। इसमें खास करके इन्होंने जो कहा कि खेती को नई गति देने के लिए नीति, नवाचार, निष्ठा के साथ, समय के साथ परिणामकारी और किसान केंद्रित काम करना होगा।
2: जी, इसी के साथ ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।
1: हाँ, अगला कार्यक्रम आपको बता दें कि आप 7:05 पर सुन सकेंगे कृषि जगत।
2: जी, तब तक बने रहिए।
1: सभी सुनने वाले भाइयों बहनों का हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग

आइन कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का

0: पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम राम, राम।
1: और कृषि जगत कार्यक्रम इसमें लेकर के हाजिर हैं हम माने यमुना और
0: मैं वीरेंद्र।
1: बिल्कुल, और बात जो चलती है, चर्चा हम करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, उसके बहुत से फायदे भी होते हैं। और खास करके
0: जी
1: आज कार्यक्रम में बताएंगे कि फल सब्जी और मिलेट्स अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या फायदे होते हैं।
0: जी, इनके इतने फायदे हैं कि हम उन सब फायदों को भूल गए हैं और अब समय के साथ उन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता पड़ रही है। फल हम ना जाने कितने हजारों सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका औसत थोड़ा सा कम हो गया है यमुना बहन, तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। और अगर हम इन्हें निरंतर खाते रहते हैं तो हमारे अंदर मजबूत जो इम्यूनिटी होती है,
1: वो
0: रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बनी रहती है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, वो हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको अच्छे से निभाते रहते हैं। इसलिए फल खाने चाहिए, और सारे मौसमों के फलों के
1: जो आपने कहा
0: असर अलग अलग होते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे इस समय खरबूजा है, वो कुल मिला के पानी की मात्रा ज्यादा है, खीरा है, तरबूजा है, आम तो फलों का राजा है। अब सीजन है इस समय फलों का, तो आम खूब सेवन करें, खूब खाएं। और आम के तो बहुत से ऐसी वैरायटी हैं, अचार से लेकर के आम पापड़ से लेकर के उसका एक शेक बनाते हैं, वो भी पी सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं, हमारी फलों में इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा क्षमता है।
0: जी, तो उदर पूर्ति में जो 1% मतलब प्रतिशत हिस्सा फलों का भी रखना चाहिए।
1: और साथ ही साथ हम सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जी जरूर खाना चाहिए, और खास करके अगर देखें तो जो मौसमी, जैसे मौसम होता है फलों का, वैसे सब्जियों का भी होता है। इस समय आप देखोगे तो हरी सब्जियां भी मौजूद हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाती है। खास करके हम पुदीने की बात कर लें, धनिया और पुदीने और आम की चटनी बनाइए, और साथ ही साथ अगर आप जब चटनी बनाती हैं उसी को आप घोल जैसा बना के पीजिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मिलेट्स की अगर हम बात करें तो सत्तू इस समय कितना फायदेमंद है,
0: वैसे भी खाया जाता है सत्तू को, घोल भी सत्तू को तो वैसे ही खा भी लेते हैं, तो इतना आनंद आता है।
1: मीठी सत्तू भी लोग खाते हैं और

0: थोड़ा सा नमकीन सत्तू भी लोग खाते हैं और पुदीने की चटनी के साथ।
1: हमारे पूर्वज हजारों सालों से सत्तू खाते हुए आ रहे हैं और उसी से गर्मी से दो दो हाथ कर लेते थे।
0: बिल्कुल। और आटे की हम बात करें तो जैसे हम मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं तो जैसे हम आटा अगर सीधे सीधे केवल आटे की रोटी बनाते हैं तो उतना फायदेमंद नहीं होता जितना अगर उसमें थोड़ा सा मिलेट्स मिला ले, मतलब थोड़ी सी रागी, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा। लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि तपिश है तो इसमें थोड़ा सा बचाना चाहिए। में जैसे बाजरे की हम बात कर रहे हैं तो जैसे तासीर गर्म होती है तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। तो है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर आप मिलेट्स को मिला खाते हैं आटे में तो बहुत ही फायदेमंद और तंदुरुस्ती बनाने वाला होगा
1: जी। तो आप अगर आपको अपने आप को चंगा बनाना है और तगड़ा और तंदुरुस्त बनाना है तो भाई आपको मिलेट्स मोटे अनाज खाने चाहिए, अपने भोजन में उन्हें जरूर शामिल करें। जैसे यमुना बहन आप बता रही थी कि कुछ की तासीर गर्म होती है तो जरूरी नहीं है हम एक किलो खाएं, हम 250 ग्राम भी खा सकते हैं,
0: थोड़ा सा मिला सकते हैं समय के अनुसार, मौसम के अनुसार थोड़ा सा मिला के खा सकते हैं। और खास करके गर्मी का मौसम चली रहा, थोड़ा सा तो मौसम बदला, करवट लिया मौसम ने, थोड़ा सा आराम मिला है जीव जंतु से लेकर इंसानों तक।
1: आपकी बात है ना, भगवान जी जरूर सुनते हैं। आज देखो बारिश सी होने लगी है, उसका स्वागत करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल। लेकिन गर्मी से जब जी घबराता है तो मुझसे कुछ न कुछ ऐसे ही निकलता है जैसे कि अशोक कुमार अपने इस गीत के जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं।
1: जी मेरा भी जिया घबराने लग जाता है।
2: हर गर्मी से

0: तो साथियों शिमला घूम आए हैं हम, अशोक कुमार ने हमें अच्छे से घुमा दिया है शिमला, और अब तो दिल्ली में ही शिमला बनने की तैयारी हो गई है। बादल आ गए हैं, झमाझम बारिश होगी ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, उम्मीद रखनी चाहिए, आशा हर चीज़ की करनी चाहिए। और खास करके इस समय हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 का, जो कि इस जिसका आयोजन नई दिल्ली में 28 से 29 मई तक चला, और इसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हमारी साथी मंजीत कौर ने क्या बात की, चलिए सुनते हैं।
2: चलिए जानना चाहेंगे, दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन यहाँ दिल्ली में किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहन से?
3: निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत गंभीर है। जहाँ किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, उसी के साथ साथ अब खरीफ का सीजन आ रहा है, इसलिए भारत के माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने दिल्ली में भारत के समस्त प्रांतों के कृषि मंत्री आमंत्रित किए, कृषि वैज्ञानिक आमंत्रित किए और किसानों को भी आमंत्रित किया है, और उनके बीच में बातें सब रखी हैं कि हम आने वाली खरीफ फसल को अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं और उनमें रासायनिक खाद कम से कम कैसे डालें और प्राकृतिक खेती की ओर देश के किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करें, और इस दिशा में अगला एक महीना पूरा कृषि विभाग गांव-गांव में जाएगा, किसानों की संगोष्ठियां करेगा और कि लोगों के लिए जहर मुक्त भोजन कैसे प्राप्त हो जिससे लोगों का स्वास्थ्य बचे, पर्यावरण बचे, पानी बचे, धरती माता का स्वास्थ्य बचे, इस दिशा में बड़ी गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी किसानों के सुखद भविष्य की दिशा में मिलके काम कर रहे हैं।
2: एक अंतिम सवाल, खेत बचाओ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, तो हमारे किसानों को इससे किस तरीके से जूझना चाहिए?
3: निश्चित रूप से खेत बचाओ का अभिप्राय यही है कि हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बचे, उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ जमीन मिल सके। ये रासायनिक खादों से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बुरी तरह से गिरा है और प्राकृतिक खेती उस ऑर्गेनिक कार्बन को नियमित रूप से बढ़ाने का काम करती है, इससे धरती माता बचेगी और धरती का स्वास्थ्य होगा तो खेती अपने आप बचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
3: धन्यवाद।
1: हमारी साथी मंजीत कौर ने अभी बात की गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत से, और देखा जाए तो वाकई कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं
0: जी, और हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और गर्मियों में सब्जियों और फलों में कैसे हम परिवर्तन करके उनकी देखभाल कर सकते हैं, उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है
1: कि गर्मियों में सब्जी की फसलों में सिंचाई और उर्वरक प्रधान जो हमारा प्रबंधन है वो कैसे हो, इसके बारे में विशेषज्ञ हैं जो बता रहे हैं। डॉक्टर बी एस तोमर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल, तो चलिए सुनते हैं।
4: किसान भाइयों नमस्कार, इस समय गर्मी का माहौल है और

0: इस गर्मी के मौसम में जो हमारे खेतों में सब्जियां किसान भाइयों ने लगा रखी हैं उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, और किस तरीके से उनका उत्पादन बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं, किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन करना है, उसकी इतनी गर्मी लू से उसे बचाना भी है, तो किस तरीके से सारा प्रबंधन करें, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बीएस तोमर जी को, जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके का इस समय मौसम है, इस मौसम को देखते हुए जो आपके किसान भाइयों ने खेतों में सब्जियां लगा रखी हैं, किस तरीके से उनकी देखभाल करें जिससे जो हमारी जनता है उसके लिए सब्जियां प्राप्त हो सके?
1: आप सभी जानते हैं कि गर्मी का जो मौसम है अब वो हम उसके अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, और 15 जून तक हम गर्मी का मौसम मानते हैं कि जो फसलें हमने मध्य फरवरी में रोपाई की थी या मध्य फरवरी के बाद में बिजाई की थी, वे फसलें लगभग अपने अब चरम पर हैं और उनसे उत्पादन किसान भाई बराबर ले रहे हैं। लेकिन गर्मी में स्वाभाविक रूप से दिन और रात का तापक्रम में वृद्धि होना, ये गर्मी के मौसम की पहचान है। और दिन का तापक्रम के साथ साथ सब्जियों में पुष्पन और फल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें रात्रि का तापक्रम भी बहुत महत्व रखता है। अगर हम फसलों के अनुरूप जाएं तो जितनी भी हमारी टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, इनमें अगर दिन का तापक्रम 38 से 40 डिग्री जाता है तो इसमें पुष्पन तो होता है लेकिन फल बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और अगर रात्रि का तापक्रम दिन का तापक्रम अधिक भी रहे परंतु रात्रि का तापक्रम कम रहे तो भी काम चल जाता। तो ये दिन और रात्रि का जो तापक्रम है दोनों को मिलाकर के हम देखें तो ये एक बहुत क्रिटिकल अवस्था है पौधे के लिए। इस दिन के 40 डिग्री प्लस और रात्रि का जो तापक्रम जैसे 26 से ऊपर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा नहीं रहता पौधे के विकास के लिए भी, पुष्पन के लिए भी, फल बनने की प्रक्रिया के, और जो फल पहले से बने हुए भी हैं उनके विकास को भी बाधा करता है,
0: यानी बढ़वार भी नहीं हो पाती।
1: और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बैंगन में विशेष रूप से फलों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका प्रॉपर रंग नहीं आता है, और इसी तरह से टमाटर में सन स्कैल्डिंग की संभावना बढ़ जाती है या मिर्ची में भी सन स्कैल्डिंग हो जाता है, शिमला मिर्च बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। तो ये जो तापक्रम की स्थिति है, हालांकि ये जो फसलें हैं ये अभी अपने ग्रीष्मकालीन की जो फसलें हैं वो अपने जीवन काल के अंतिम पहुंची, लेकिन अभी भी किसान भाई उनसे 3-4 पीकिंग अभी बैंगन में, मिर्ची में, शिमला मिर्ची में और टमाटर में संभावनाएं ले सकते हैं। अब लेकिन इन परिस्थितियों से निपटे कैसे? तो इन फसलों में गर्मी के बढ़ते हुए तापक्रम को कम करने के 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो हम सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रखें और सिंचाई का समय भी हम दिन में ना दें, प्रातः काल में या दोपहर 4 बजे के बाद पानी खेत में लगाएं। अगर किसान भाई दिन में पानी देते हैं और वो पानी 10-11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक या दिन भर खेत में पानी खड़ा रहता, ठहर जाता है, तो तापक्रम बहुत तेजी से बढ़ता है और उसमें पौधे के उकटन या उनके विकास को अवरुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। तो एक तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि भाई पानी सीमित मात्रा में दें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका अंतराल कम कर दें, जल्दी जल्दी दें, हल्की सिंचाई दें, नमी बनाए रखें,
0: ताकि मतलब यह है कि सिंचाई करें एकदम खेत में भरे नहीं।
1: तो एक तो ये सावधानी हमारे किसान भाई रख सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, आजकल पानी की कम उपलब्धता होती है तो किसान भाई नए नए जो वैज्ञानिक तरीके हैं कम पानी से हम ज्यादा क्षेत्रफल में उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें रेन गन लगाते हैं या ड्रिप फर्टिगेशन होता है, तो ड्रिप फर्टिगेशन में सुबह शाम फर्टिगेशन करने की आवश्यकता होती है। और रेन गन को हम तेज धूप की अवस्था में अगर हम रेन गन चलाते हैं तो उससे खेत के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट का विकास होता है और उससे गर्मी के कारण होने वाली नुकसान को हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि भाई खेतों में आप साफ सफाई का ध्यान भी रखें, खरपतवार ना उगे। जब खरपतवार बढ़ते हैं और बाकी खेत साफ होते हैं तो सारे आसपास के जो कीड़े हैं, खासतौर से जो होपर हैं, ब्राउन होपर और ग्रीन होपर, ये सारे के सारे कीड़े उस खेत में आ जाते हैं जहाँ खरपतवार होते हैं, फसल होते हैं, नमी होती है।
0: खरपतवार भी डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, सिंचाई बार बार देनी होती है।

0: तो ये जिस तरीके से मुख्य फसल बढ़ती है उस तरीके से खरपतवार भी बढ़ते हैं
1: तो
0: उसमें।
1: इसलिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि एक निराई गुड़ाई करना जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में कोई भी ऐसा खरपतवार नाशी नहीं है जिसकी संस्तुति की गई हो कि फसल की इस अवस्था में हम फसल को बिना नुकसान पहुंचाए हम कोई खरपतवार नाशी की सिफारिश किसान भाइयों को कर नहीं सकते। तीसरी जो बात है कि हम उसमें होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी है कि हम अपना उसमें थोड़ा पोटेशियम 1% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। एक प्लेनोफिक्स एक रसायन आता है,
0: जी
1: ग्रोथ संवर्धक है, उसको जो है हम 2 से 3 PPM की मात्रा में उसको छिड़काव कर सकते हैं और उसमें जो है फूल तो आएंगे इस अवस्था में, बैंगन में, मिर्ची में, शिमला मिर्ची में, लेकिन फल नहीं बनेंगे। तो फल बने उसके लिए प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो ये 4 बातें तो हमारे किसान भाई बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची और टमाटर के लिए कर सकते हैं। अब दूसरी जो समूह है दलहनी सब्जी है, जिसमें लोबिया है, गुआर है, जो लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे तो स्वयं परागित हैं लेकिन इस फूलों का उत्पादन कम हो सकता है, फल झड़ सकते हैं या फलों में परागण नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए वहां पे भी जो हमने सिफारिशें यहाँ की कि खेत में नमी का होना आवश्यक है, और अगर खेत की दिशा ये लगी हुई है जब लूहू चलेंगी अभी, तो उनके होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अस्थायी रूप से विंड ब्रेक का निर्माण भी खेत में कर सकते हैं। विंड ब्रेक क्या है? अभी जो पश्चिम की हवाएं चलेंगी और वो पूरी कम आर्द्रता के साथ होगी, आर्द्रता अभी 45 के आसपास आ गई है और ये और घट सकती है कि 40% तक हो सकती है। जैसे ही आर्द्रता कम होगी तो इससे पत्तियों में झुलसने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम इसमें किसान भाइयों को सुझाव देंगे कि अगर वो उनके पास कुछ पुराने शेड नेट हैं या प्लास्टिक हैं तो बैम्बू या लोहे के डंडे गाड़ करके पश्चिम दिशा में खेत के और 5-5 मीटर की दूरी में ब्रेक बना सकते हैं, जिससे कि गर्म लूहू फसलों के संपर्क में सीधे नहीं आएगी और जब हम नमी रखेंगे तो एक माइक्रो क्लाइमेट बनेगी, तो उससे हम उसे बचाव कर सकते हैं इन फसलों में। अब तीसरी बात करते हैं कि जो बेल वाली फसलें हैं, क्योंकि ये
0: जी
1: प्रमुख रूप से अभी खेत में लगी हुई हैं और ये अभी चलेंगी, चाहे उसमें आपका लौकी है, तुरई है, खीरा है, खरबूजा है, खरबूजा तरबूज तो अब जितना फल बनना था बन गया,
0: जी
1: टिंडा है, सीताफल है, करेला है, खरबूजे और तरबूज को छोड़ के, क्योंकि इसमें
0: जी
1: नए फलों का निर्माण नहीं होगा, जो फल पहले से बने हुए अब वो पकेंगे। खरबूजा और तरबूज के लिए तो गर्म और लू हवाएं बहुत अच्छी हैं, उसमें फलों की मिठास बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और बीमारी रोग कीड़े कम लगेंगे। लेकिन दूसरी जो फसलें मैंने नाम लिया, लौकी है, तुरई है, सीताफल है, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, टिंडा है, चिचिंडा है, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब इसमें क्या संभावनाएं रहती हैं नुकसान होने की, कि जब सनलाइट ज्यादा होती है तो ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर बेल वाली सब्जी फसलों में, क्योंकि इनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं और ये इसलिए इनको हम मोनोसियस सेक्स फॉर्म बोलते हैं, और परागण जो है वो मधुमक्खियां या दूसरे सहायक कीटों के द्वारा होता है। तो तापक्रम वृद्धि जैसे ही होगी तो इसमें नर पुष्पों का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जब नर ज्यादा होंगे, मादा कम होंगी, तो फलों की संख्या कम हो जाएगी, तो उपज गिर जाएगी, तो किसान को सीधे सीधे उससे भी
0: नुकसान।
1: नुकसान होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हालांकि हमारे अनुसंधान में हम लोग अभी विकसित कर रहे हैं करेले में, खीरे में, इनमें तो हम दो में तो गाइनेशियस लाइन का इस्तेमाल करके संकरों का विकास कर रहे हैं, या दोनों पेरेंट भी गाइनेशियस हैं, तो ऐसे में जो नुकसान है वो कम होता है, क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर ही आते हैं। जब फीमेल ही आएंगे तो जो मेल हैं वो तो आएंगे नॉर्मल, और जो हाइब्रिड है उसमें फीमेल फ्लावर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो जो गाइनेशियस बेस्ड हाइब्रिड जिन किसानों लगा रखे हैं उनके खेतों में नुकसान कम होगा,
0: यानी उनके जो फल बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं।
1: उनके ज्यादा रहेगी जिन जो संकर किस्में गाइनेशियस सिस्टम बेस्ड हाइब्रिड है, और जो मोनोसियम सिस्टम बेस्ड हाइब्रिड है
0: पुराने
1: जिस
0: वाले किस्में
1: पुराने वाले सिस्टम है उनमें नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है।
0: वैसे ज्यादातर जो व्यवसायिक स्तर पे हमारे किसान भाई लगा रहे हैं वो नई किस्में ही हाइब्रिड ही लगाते हैं।
1: खीरे की अगर मैं बात करूं, खीरे में मोनोशियस इंटू मोनोशियस एक हाइब्रिड होते हैं, एक गाइनेशियस इंटू मोनोशियस हाइब्रिड होते हैं और एक गाइनेशियस इंटू गाइनेशियस, और 3 तरह के हाइब्रिड अलग अलग जेनेटिक सिस्टम को यूज करके यूज करते हैं। तो अगर गाइनेशियस बेस्ड F1 हाइब्रिड होते हैं तो उनमें नुकसान कम होता है, क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर की मात्रा स्वतः ही आनुवांशिक रूप से अधिक पैदा होती है, अब लेकिन किसान भाइयों ने जिन्होंने अब खीरा लगाया हुआ है वो तो उसको बदल नहीं सकते, तो आगे के समय में हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं, जब बीज खरीदे या किस्म का चयन करें तो इस बात का ध्यान

0: रखें कि भाई हमारा हाइब्रिड मोनोशियस इंटू मोनोशियस तो नहीं है, गाइनेशियस इंटू मोनोशियस हो या गाइनेशियस इंटू गाइनेशियस हो, तो इस स्थिति में खीरे के अंदर उत्पादन अच्छा मिल सकता है अगर गर्मी का तापक्रम भी ज़्यादा बढ़ता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रहे मतलब कि क्या क्या सावधानी रखें किस तरीके से, लेकिन क्योंकि हमारे किसान भाइयों के इस बीच फसल तुराई का भी रहता है कि तुराई में भी सावधानी रखनी पड़ती है कि किस समय तुराई की जाए, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: निश्चित रूप से जो तुड़ाई का समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय बाजार में अगर बिक्री के लिए भेजना है या किसान सीधे कहीं बाजार में स्वयं जाके बिक्री करता है,
1: जी
0: तो ऐसी में तो किसान भाई सुबह के समय प्रातः भोर में 4 बजे जाके 5 बजे जाके अपनी हार्वेस्टिंग करके और 6-7 बजे अपने स्थानीय मंडी में अपना माल ले जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। अधिकतम किसान दूर मंडियों में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर अपना सब्जियों को भेजते हैं। या हम दिल्ली के आसपास की बात करें तो अधिकतर सब्जियां दिल्ली के आजादपुर मंडी में आती हैं और किसान उनकी तुड़ाई दोपहर से ही शुरू कर देते हैं। अब किसान की भी मजबूरी है, अगर बड़ा खेत लगा है वो 3 घंटे में तुड़ाई नहीं हो सकती, तो किसान भी सुबह से ही तुड़ाई शुरू करता है। अगर किसी के पास 2 एकड़ की हार्वेस्टिंग करनी है तो निश्चित रूप से 4-5 लेबर उसको पूरा दिन लगानी पड़ती है। तो ऐसे में जो फल सुबह के समय तोड़े जा रहे हैं या दोपहर के समय ज्यादा गर्मी की अवस्था में तोड़े जा रहे हैं, तो उसमें फल के अंदर तापक्रम बढ़ जाता है
1: वो
0: तो
1: गर्म हो जाते
0: गर्म
1: हैं।
0: हो जाते हैं। ऐसे में जब अगर गर्म फलों को आप तोड़ करके उनको बोरियों में भर देंगे या ट्रे में भर देंगे या डब्बों में भर देंगे, तो उसमें उनकी हीट आपस में बनेगी, उससे एक शब्द बोला जाता है PLW, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। ऐसे में तो वातावरण में गर्मी, ऊपर से आपने गरम गरम फल बंद कर दिए, तो उसे वाष्पोत्सर्जन फल की सरफेस से ज्यादा होता है।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बातचीत गर्मियों में सब्जी की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर BS तोमर, और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम ही समाप्त होता है। सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं गजल कव्वाली।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खूबसूरत कवाली सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और साथी की आवाज़ में, और ये कवाली थी फिल्म अमर अकबर एंथनी से। आइए सुनते हैं अगला

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए NBCC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परीक्षार्थियों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस

0: मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800 11 800 4 पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल 2.0 को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि ये पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड ऑडिट, अलर्ट सिस्टम और कैमरा सेंसर डेटा के जरिए बताएगा कि किन साइट पर नियमों का पालन हो रहा है तथा कहां लापरवाही हो रही है। श्री सिरसा ने कहा कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के माध्यम से समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। इस व्यवस्था से हर साइट की 7 दिन 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिससे लापरवाही करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि धूल और प्रदूषण को रोकने की जवाबदेही तय करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC के साथ शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नगर निगम ने इसे राजधानी में सार्वजनिक अवसंरचना तथा सामुदायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये समझौता ज्ञापन नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार तथा NBCC के अध्यक्ष डॉ KP महादेव स्वामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी तथा ये सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों और सामुदायिक सभाओं के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रोहिणी स्थित अम्बेडकर भवन में राजस्व विभाग के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन की जर्जर हालत, खराब लाइट व्यवस्था, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श, गंदे शौचालय और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर भवन में मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण तथा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सम्मानजनक सेवाएं प्राप्त हों। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी LPG वितरक से रसोई गैस कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक

0: रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
2: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काई कास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि IIMC का मीडिया शिक्षा में लंबा अनुभव रहा है और इसने कई पीढ़ियों के मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर IIMC की कुलपति प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि यह अकादमी मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में AI शिक्षा, व्यावहारिक कौशल और नवाचार के लिए देश का पहला राष्ट्रीय केंद्र है। उन्होंने बताया कि यह अकादमी दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय जैसे संस्थानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और AI टूलकिट तैयार करेगी। दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन अवैध अप्रवासियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने चालान और यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड किया है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले नागरिक अब मौके पर ही डिजिटल पेमेंट तरीकों जैसे UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से चालान भर सकेंगे। इसके अलावा मौके पर मौजूद चालान अधिकारी के पास उपलब्ध हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, नागरिक अनुकूल, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कृषि और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित उनके ऐतिहासिक निर्णय और जन कल्याणकारी नीतियां सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का योगदान राष्ट्र निर्माण में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दिल्ली के मंत्री प्रवीर साहिब सिंह, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान

पत्र बनाए जा चुके हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिन भर हल्के बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए NBCC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं विशेष नाटक 9 दशकों के 9 रस। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: ये दादी इतनी उदास खड़ी आईने में क्या देख रही है?
3: दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार।
2: एक बदनसीब हूं मैं, मुझे देखा नहीं एक बार मेरे दिल में।
4: हम दो पल के लिए चुप क्या हुए साहबजादे कि तुम आप से तुम पर उतर आए? याद दिलाएं तुम्हें या खुद ही याद कर लोगे कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दादी लगते हैं?
2: वाह वाह वाह वाह, क्या कमाल की एक्टर हो आप दादी, सच में। अरे आपकी एक्टिंग के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते होंगे। वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी है आपकी।
4: हाँ ये तो है, जब मैं रेडियो में ड्रामा करती थी ना तो मैं अपने डायलॉग्स एक टेक में ही फाइनल कर देती थी।
2: अच्छा,
4: नो कट वर्क। ये तो शादी हो गई, वरना तो रेडियो पर ही नहीं बड़े पर्दे पर भी कमाल ही कर रही होती तेरी दादी।
2: 100% एग्री दादी, पर ये हाथ में क्या लेकर बैठी हैं आप? ओहो, अपनी सुंदरता को निखारने का एक और जबरदस्त नुस्खा।
4: हाँ पर क्या करें, अब हाथ ही नहीं उठ रहे लगाने को।
2: क्यों भाई, ऐसा क्या इस पैक में दिखाओ।
4: अरे मुझे आज पता चला कि उम्र बढ़ना बुढ़ापे की निशानी नहीं होती। हाँ
2: अरे
4: अजय सुनते हो, रिदम आपको बूढ़ा कह रहा है।
5: बूढ़ा होगा तेरा पिताजी समझा। अरे हम तो अभी जवान हैं, 10 किलो आटा पिसवा कर खुद लेकर आ रहा हूँ। तेरे पिताजी में और तुझ में इतना दम?
2: अरे मतलब ही नहीं बनता दादाजी, अरे हम में दम है पर बहुत कम है, लेकिन इसका हमें नहीं कोई गम है।
5: बस बस बस बस, जान छुड़ा ली है कह के। सुबह सुबह उठकर 8 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ मैं, और तेरा पिताजी अभी तक तो बिस्तर तोड़ रहा है।
2: जी जनाब, और आज वो सारा दिन बिस्तर ही तोड़ेंगे क्योंकि आज छुट्टी है। आप सब कुछ छोड़े, दादी को देखें, वो इतनी उदास क्यों बैठी है, देखो ना।
5: कहाँ तेरी दादी और उदास, और ये फेस पैक हाथ में लेकर उदास कौन होता है भाई? क्यों रुकमणी जी, गलत कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, आज तो आप गलत ही कह रहे हैं।
5: अरे
4: अजी क्या फायदा ऐसे फेस पैक का कि आप अपनी उम्र तो छिपा रहे हो पर आप जवान नहीं हो पा रहे हो।
5: ओ अरे भाई, सभी उम्र ही छुपा

0: सकते हैं, जवान थोड़ी हो सकते हैं। कौन है इस दुनिया में जो उम्र बढ़ने के साथ जवान हुआ हो, सिवाय मेरे? मतलब
1: बताऊं
2: कुछ भी है?
1: हमारा रेडियो सुनो, हमारा आकाशवाणी 9 दशक हो गए और ये तो दिन पर दिन जवान ही होता जा रहा है। मालूम है 1936 से आज तक आकाशवाणी ने इतने नए नए

0: जवान होना ही हुआ ना जनाब।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और हमारी जिंदगी देखो तो कोई नयापन ही नहीं है।
1: बेटा तुम्हारी दादी ने रेडियो जाना छोड़ दिया पर नाटक करना आज तक नहीं छोड़ा।
2: दादी सुन रहे हो?
3: क्या हुआ, इतनी महफिल जमी हुई है यहाँ तो लगता है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा है।
1: हाँ बहू, हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम्हारी सास अपना कंपैरिजन रेडियो स्टेशन से कर रही है। 90 साल होने के बावजूद वो दिन पर दिन जवान होता जा रहा है और ये बूढ़ी
0: क्या?
1: अरे बाप रे।
3: माजी माजी माजी, आप अपने नाटक करने ना फिर से शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है आप रेडियो बहुत मिस करते हैं।
0: हाँ कभी कभी तो बहुत मिस करती हूँ। रेडियो 90 साल का हो गया है, बहुत गर्व होता है ये सोचकर कि ये वो जगह है जहाँ गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और अब हमारे मोदी जी देश की जनता को संबोधित करते आए हैं।
2: सच बोलूं तो मुझे तो सुनकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। कितनी प्राउड जगह है ना दादी ये रेडियो स्टेशन।
0: बिल्कुल, कैसे कैसे रेडियो बदलता चला गया पर हमारे नाटकों की दुनिया नहीं बदली। आज भी हमारे नाटकों का कोई जवाब नहीं है।
2: हाँ हाँ दादी मुझे याद है, एक बार आप मुझे लेकर भी गई थी ना अपने साथ स्टूडियो में।
0: हाँ एक बच्चे के 2-3 डायलॉग्स थे, मुझे लगा कुछ तो सीखा ही होगा तूने, पर तूने तो चौड़े में बेइज्जती करवा दी। अरे बिस्किट, चॉकलेट, कार, खिलौने सब तेरे आगे रख दिए पर तू था कि टस से मस नहीं हुआ। खा सब कुछ लिया, कार और खिलौने भी अपने कब्जे में कर लिए और फिर पता है क्या कहा?
2: क्या?
0: घर चलो।
3: और पता है माजी, तभी से इसका ये पैटर्न चला आ रहा है, चौड़े में ही बेइज्जती करवाते
2: हैं। हाँ कुछ भी, हाँ कुछ भी मम्मा। हाँ और अब कहाँ करवाता हूँ मैं चौड़े में बेइज्जती। और आप लोगों को याद है सरबत आंटी का बेटा नंबर कम लाया था और पिटाई मेरी हुई। मैंने पूछा क्या गलती हो गई मम्मा, तो मम्मा ने कहा इतने कम नंबर लाया तो तेरी भी ऐसी ही पिटाई होगी। याद है भाई?
1: रुक्मणी भाई क्या हुआ, तुम तो फिर से उदास हो गई। अच्छा भाई बताओ आज चाय पर चर्चा का क्या टॉपिक है?
2: मेरे ख्याल दादी का मूड ठीक होगा आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस इस टॉपिक से। इससे अच्छा टॉपिक और क्या होगा? क्यों
1: पर ये तो बहुत ही सुंदर टाइटल है, आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस। वाह, नाटकों में ही 9 रस हो सकते हैं। क्यों रुक्मणी जी, आपने तो हर रस के भाव को छूता हुआ नाटक किया होगा ना।
2: दादी आपका सबसे फेवरेट नाटक कौन सा था?
0: ऐसे तो बहुत नाटक थे पर कुछ नाटक मुझे बहुत ही पसंद थे। चूंकि नाटकों में अब देखो हमें आपको सिर्फ सुनवाना तो नहीं है ना, आपको ये भी महसूस कराना है कि आप सुनने के साथ साथ जैसे देख भी रहे हो। एक नाटक याद आता है जिसमें जब माँ बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं तो क्या है कि एक एक सीन आप खुद ब खुद विजुअलाइज करने लगते हैं, आप उन आवाजों में से उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसे खो जाते हैं कि आपको वो कैरेक्टर्स, वो सीन जैसे अपने आप दिखने लगता है। यही होता है रेडियो के डायरेक्टर और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाले का कमाल, वो आपको सोचने का मौका ही नहीं देते कि आप देखने को मिस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: अरे वाह क्या बात है दादी। और पता है एक दिन मैं हवा महल सुन रहा था, मेरे एक दोस्त ने लिंक भेजा था, उसने कहा मैंने तेरी दादी का नाटक सुना है भाई, बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा।
2: और ये बात सुनकर तो मुझे लगा कि मैं एक स्टार का पोता निकला भाई। बड़ा गर्व होता है, ये फीलिंग ही अलग है नाटक आर्टिस्ट होना। क्यों दादी?
0: चल चल मस्केबाज।
2: नहीं सच में दादी, और पता है रेडियो आर्टिस्ट तारीफ के काबिल होते हैं और जो इन नाटकों को बनाते हैं उनको तो सल्यूट है भाई। कलाकार अपनी आवाज से और डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक से ऐसा माहौल बना देते हैं कि उस झलकी या नाटक से ध्यान ही नहीं हट पाता।
1: बिल्कुल।
2: आज तो इंसान 1 सेकंड में चैनल चेंज कर देता है पर यहां ऐसा होता ही नहीं है
3: भाई। यही तो खूबसूरती है रेडियो नाटकों की। क्यों? अच्छा माजी वैसे कब से शुरू हुए होंगे ये रेडियो के नाटक?
0: हाँ भाई, आकाशवाणी के

0: नाटकों या आकाशवाणी का इतिहास किसी को पता है कुछ?
1: मुझे नहीं भाई, नहीं, आई एम रियली वेरी बैड इन हिस्ट्री।
2: ओनली इन हिस्ट्री? बाकी में तो जैसे आप कोई तोप है।
3: नमस्ते।
0: रिमशा, तुमने भी एंट्री क्या गजब की ली है। आई लाइक दिस डायलॉग। वाह भाई वाह।
1: ये एक और आ गई,
4: मल्लिका ही एक्टर।
0: अच्छा भाई, अब रिमशा भी आ गई है ना, तो अब भाग के जाओ रिदम जी और चाय बनाकर लेकर आओ सबके लिए, समझे? आज तो चाय पर लंबी चर्चा होगी। और पता है रिमशा टॉपिक क्या है? आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस।
2: 9 दशकों के 9 रस? सच?
0: हाँ
2: बिल्कुल आंटी, अब तो करनी है चर्चा।
3: वेरी गुड।
1: और एक्सक्यूज मी मिस रिमशा कुमारी, मत भूलो कि तुम मेरे ही कारण एक ड्रामा आर्टिस्ट बन पाई हो, समझी?
2: अच्छा, बताना कैसे? तुमने ऑडिशन में पास किया था मुझे, बोलो।
1: नहीं नहीं, लेकिन आप याद कीजिए ना, आप मुझसे मिलती ना, मैं तुम्हें घर लाता ना, ही तुम्हारी आवाज और मॉड्यूलेशन देखकर दादी कहती कि तुम्हारी आवाज अच्छी है और तुम्हें एक बार रेडियो में नाटक विभाग में ऑडिशन देना चाहिए। ना मैं वहां से फॉर्म लाता, ना आप भरती और ना ऑडिशन देती, तो बताओ तुम कैसे ड्रामा आर्टिस्ट बनती? हाँ?
0: हाँ, और अगर रिमशा की आवाज में दम ना होता ना, तो वो ड्रामा आर्टिस्ट बनती ही नहीं। भाई आवाज में दम था तो ये सब मेहनत काम आई, वरना तो सिफर होता सब कुछ।
3: चाय?
1: हाँ ठीक है, कुल मिलाकर मुझे चाय बनानी ही पड़ेगी।
3: हाँ भाई, चाय तो तुझे ही बनानी पड़ेगी, और वो भी 4 कप तो तू ही पी जाएगा, तो भैया 5 बना लियो हैं।
0: क्यों, तो हम नहीं है।
1: ठीक है ठीक है, डन। चाय के कप 5, पर मेरे सवाल हैं 3। अगर उन सवालों का जवाब रिमशा जी ने सही दे दिया तो मैं चाय बनाऊंगा, अगर नहीं तो फिर रिमशा चाय बनाएगी, पक्का बताओ।
2: डन, मेरी तरफ से भी डन। चलो पूछो सवाल।
1: आपका पहला सवाल, मिस्टर मार्कोनी कौन थे?
2: सिंपल, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के जरिए आवाज जा सके।
0: बिल्कुल।
1: ओके ओके, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। अच्छा बताओ, केव ब्राउन, जिन्हें रेडियो में उनके निक नेम जिम से जाना जाता था, और बीबीसी के पहले जनरल मैनेजर जेई रीथ कौन थे? दोनों सवाल एक साथ है बेटा, बताओ बताओ।
5: बताते रुको, जरा रुको भाई। हाँ तो
1: घड़ी चल रही है।
5: रुको।
2: दादाजी, दादी जी, आंटी आप तो बताएं, कोई तो मेरी मदद करे।
0: सॉरी डियर।
1: टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3।
3: ए भाई, ये सब अंताक्षरी में करना, और ज्यादा भाव मत खा, बता दे ये लोग कौन थे, बता ना।
1: दादाजी सिर्फ आपके लिए, आप कह रहे हैं तो बता देता हूँ।
3: थैंक यू सो
1: मच। वरना तो खैर, बीबीसी के पहले जनरल मैनेजर थे जेई रीथ, जो 1923 में ही चाहते थे कि भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हो।
4: और वैसे भी उन्हें भी नहीं पता जो ये कह रहे थे, ओनली इन हिस्ट्री।
2: अच्छा अच्छा, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, अब ये बताओ कि रेडियो स्टेशन बनाने में लागत कितनी आई थी?
1: उस समय 6.5 लाख की लागत से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी थी, पर 1930 तक ये कंपनी दिवालिया हो गई और रेडियो का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था।
0: सच में? तो दोबारा तो शुरू किया ही गया होगा ना?
1: जी दादी जी, दिल्ली रेडियो की स्थापना की गई, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 1 जनवरी 1936 को हुई, पर जल्दी इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो सर्विस कर दिया गया।
3: Correct.
1: और पता है 1957 तक ये आकाशवाणी के नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गया था।
0: भाई क्या बात है रिदम कुमार जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। हाँ भाई, आखिर पोता किसका है
3: और नालायक किसका है?
0: आपका,
1: आपका, आपका। आपका। और सबको पता है कि रेडियो की सिग्नेचर धुन किसने बनाई थी?
0: अरे हाँ, ये धुन तो बहुत ही अट्रैक्ट करती है, आज भी कानों में गूंजती रहती है। बस पता है कई लोग तो इसे रिंगटोन की तरह यूज करते हैं, इट्स वेरी फेमस।
2: पर ये धुन बनाई किसने थी, ये तो बता दो मिस्टर रिदम कुमार जी।
1: फॉर श्योर, ये बनाई थी वॉल्टर कॉफमैन ने 1936 में। वॉल्टर कॉफमैन एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थे, तब वो मुंबई रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे। वहीं

0: उन्होंने इस धुन को इजाद किया था। इस धुन के ऑर्केस्ट्रा के संचालक महली मेहता थे, जो जुबिन मेहता के पिता हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने आकाशवाणी की ये अमर सिग्नेचर ट्यून बनाई थी। और पता है, ये राग शिवरंजनी में बनी है और इसका एक वायलिन का पीस उन्होंने ही बजाया था।
1: वाह, क्या बात है भाई, वाह।
2: अच्छा रिदम कुमार जी, ये तो बताइए, वाल्टर कॉफमैन अंग्रेज थे क्या?
0: नहीं नहीं दादी, वो एक चेक यहूदी थे जो भारत में एक शरणार्थी थे।
3: वाह वाह, क्या बात है, देखा सबने, मेरा बेटा आखिर कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है।
1: पोता किसका है?
2: नहीं,
3: मतलब तो मैडम रिमशा, अब आप जाइए और आप चाय बना कर लाइए।
4: नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है जी।
3: नाइंसाफी? अभी कुछ देर पहले मेरे बेटे के साथ भी होने जा रही थी मैडम। अच्छा माँ जी, आप तो ये बताइए कि आपने नाटक कब और कैसे शुरू किए थे?
1: मुझसे पूछो। अरे मेरी तो जब से शादी हुई है, मैं इनके एक से एक नाटक देख और सुन चुका हूँ।
2: अच्छा, अब टेस्ट आपका। बताओ तो, आपको रेडियो के कौन कौन से नाटक या धारावाहिक याद है?
1: हाँ, बहुत सारे
2: बताओ,
1: जैसे जैसे हवा में है।
4: हाँ, वो तो हमें भी याद है, पहले वो रात को 9:15 बजे आता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और मेरे पापा तो बताते हैं कि उनको इंस्पेक्टर ईगल बहुत पसंद था।
1: करेक्ट।
5: वो क्या था?
2: वो भी एक धारावाहिक था, बहुत मजेदार था, सस्पेंस थ्रिलर टाइप।
3: हाँ, मेरे पापा भी बताते थे कि कोई ना कोई रहस्यमय केस सॉल्विंग स्टोरी होती थी उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: पर दादी जी, नाटक करने हैं रेडियो पर, ये कैसे सोचा होगा किसी ने? उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी और कलाकार कहाँ से आएंगे, ये कैसे डिसाइड किया होगा किसी ने? ये आइडिया आना कि नाटक ही किए जाए रेडियो पर, है ना?
2: देखो रिमशा बेटा, मुझे जहाँ तक याद है, यूरोपीय देशों में तो रेडियो नाटक पहले से ही हो रहे थे, और बीबीसी के केफ ब्राउन, जो अपने निकनेम जिम से पहचाने जाते थे, जैसा कि हमारे वेरी इंटेलिजेंट रिदम कुमार जी ने हमें बताया था,
0: yes.
2: उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को रेडियो के नए नए गुर सिखाए थे। जितना भी मैंने अपने सीनियर से सुना था, उसके हिसाब से 1936 के दशक से ही नाटकों की शुरुआत हो चुकी थी, और धीरे धीरे नाटकों की कहानियों ने लोगों को अपने से बांधना शुरू कर दिया, तो नाटक ज्यादा लोकप्रिय थे, जो आज भी हैं।
4: अच्छा, तब भी थे?
1: हाँ, और हमारे पिताजी बताते थे कि रेडियो के अंदर से आवाज आना हमारे लिए करिश्मा था, और नाटक यानी एक कहानी जिसको भाव ध्वनि के साथ प्रसारित किया जाता था, और भाई वो तो गजब ही अनुभव था लोगों के लिए।
3: और भाई, हमारे लिए तो ये बात ही अजब थी कि रेडियो में बोलने वाले लोग इस छोटे से डिब्बे में आखिर रहते कैसे हैं। अच्छा, इसी बात पर ना एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ। पता है, जब हमारे घर में रेडियो आया ना, तब हम सब ऐसे हो गए थे जैसे कि हमारे घर में कोहिनूर का हीरा आ गया हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: अपने आगे तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, सारे दोस्त वगैरह हमारी जी हुजूरी करते, और मैं और मेरा भाई रोज ही उनको रेडियो की नई नई बातें सुना देते। पर ये बात हम नहीं बता पाते थी कि इस छोटे से डिब्बे में इतने लोग आखिर रहते कैसे हैं।
2: सच?
3: तो पता है, हमारा सच उनके लिए झूठ बनता जा रहा था। अब ये बात भला हमें कैसे बर्दाश्त होती? तो भाई, मैं और मेरे भाई, हम दोनों के दिमाग में ना एक खुराफात आई कि जिस दिन ना बाबूजी घर पे नहीं होंगे ना, उस दिन हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि रेडियो में कैसे ये बोलने और ये सब गाने वाले लोग रहते हैं।
0: तभी तो मैं सोचता रहता था कि ये शैतानियां मुझे कहां से मिली है। अब पता चल रहा है कि ये तो विरासत से मिली है।
4: मुझे बात सुने दो। हाँ आंटी जी, बताइए फिर क्या हुआ? एक मिनट, आपने रेडियो अपने दोस्तों को सुनाया, उसके बाद?
3: सुनो रिमशा, हम ना मौके की तलाश में थी कि एक दिन के लिए माँ बाबूजी घर से बाहर जाएं और हम अपनी शर्त पूरी करें। बस फिर क्या था, मिल गया हमें मौका। चाचा जी की चिट्ठी आई कि फला फला तारीख को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

0: वो लोग होंगे, घर नहीं आ पाएंगे, हाँ वहीं उनसे मिलने आ जाना। बस अब क्या था, 4-5 घंटों के तो हम मालिक थे। तो जी बाकायदा दोस्तों को बुलाया गया, शरबत चले, मुरमुरे रखे गए, पहले तो खूब सारे गाने सुने गए, समाचार भी सुने हमने, पता है। अब ये दिखाना था कि ये लोग इस छोटे से डिब्बे में रहते कैसे हैं, और फिर रेडियो बंद होने के बाद जाते कहाँ हैं। अब भाई ये देखने के लिए मेरे भाई साहब ने क्या किया, रेडियो ही खोल दिया।
1: क्या नजारा रहा होगा, तो खूब डरा तक पड़ी होंगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: माजी माजी, डांट तो बहुत छोटी सी चीज थी, मार पड़ी थी खूब मार।
2: अच्छा हुआ, अच्छा हुआ।
3: अच्छा दादी, सुना है कि कई मशहूर कलाकार अपने शुरुआती दौर में रेडियो में ड्रामा किया करते थे, सच है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल सच है, और उनमें से बहुत से तो मेरे फेवरेट भी थे। पता है, पहले कलाकारों की कला रेडियो से ही निखरती और छनती थी।
4: वैसे रुक्मणी जी, एक बात तो और बहुत अच्छी है आकाशवाणी के नाटकों में, कि आपको स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, क्योंकि हम सबके हाथों में स्क्रिप्ट होती है, हम उसके डायलॉग्स में भाव डालकर बोलते चले जाते हैं, यानी अभिनय करते जाते हैं। क्यों रिमशा, ऐसे ही होता है ना आज भी?
3: हाँ दादी, मेरे हाथ में तो जब पहली बार स्क्रिप्ट आई थी ना,
5: तो तुम्हें तो चक्कर आ गए होंगे, क्योंकि आज तक तुम्हें 2 का टेबल तो याद हुआ नहीं, तो ये कैसे याद होगी, वो भी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट।
3: एग्जैक्टली, पर जब कहा कि देखकर बोलना है तो बस मजा ही आ गया। बहुत फोकस करना पड़ता है अपने कैरेक्टर पर।
1: सच में?
3: हाँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल जाते हम लोग, अपने को आर्टिस्ट के साथ कई कई बार रिहर्सल करते हैं हम, पूरी तैयारी के साथ माइक पर आते हैं।
4: ठीक है ठीक है। रिमशा रिमशा, अरे मैंने सुना था तुम्हारा नाटक, अच्छी एक्टिंग करती हो तुम।
3: ऑल क्रेडिट गोज टू दादी जी।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: अच्छा, जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से तो बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं रेडियो नाटकों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।
4: अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे रुक्मिणी जी एक बात याद आ गई, रेडियो के नाटक लिखना चुनौती होता होगा ना?
1: लेखक कमाल के थे।
4: देखिए ना, अब रेडियो से लोगों को बांधना आसान थोड़ी होता होगा, जरा सा ध्यान हटा और लोगों ने सुई बदली।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात पकड़ी है आपने। देखिए, नाटक की स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको सुनकर श्रोता बंधा रहे रेडियो के साथ, और टाइट स्क्रिप्ट हो, अगर सीरियस है तब भी उसमें भाव और अभिनय का इतना समावेश होना चाहिए कि हम उससे अपना ध्यान ना हटा सकें।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और दूसरी बात यह कि हंसी मजाक का नाटक है तो वैसा ही होना चाहिए, कॉमेडी है तो कॉमेडी में हंसी आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर कोई आप मैसेज दे सकें थोड़ा बहुत, तो वो भी देने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ठीक है, हर नाटक का काम आपको मैसेज देना नहीं है। और जहाँ तक श्रोतागण नाटक का पूरा आनंद उठा सकें, इसके लिए डायरेक्टर, कलाकार, टेक्नीशियन सबका एक साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता था। जिस ज़माने में मैंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की, तब लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, यानी रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, एडिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।
3: बहुत मुश्किल होता होगा।
1: बहुत मुश्किल होता था।
3: इसका मतलब दादी कि ये क्रेडिट जाता है सारा का सारा नाटक के डायरेक्टर को, जो स्क्रिप्ट पढ़ता है उसके हिसाब से कलाकार को चुनता है, और फिर वो ये सोचता है कि नाटक को कैसे और दिलचस्प बनाया जाए। फिर रिकॉर्डिंग होती है जिसमें साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक को जोड़ा जाता है, जिससे श्रोता डायलॉग के भाव के रस को और अच्छी तरह महसूस कर सके।
0: अब जैसे कि माजी का एक पुराना नाटक सुन रही थी मैं, सुनो ध्यान से सुनो, उसमें ये फील करवाना था कि वो शादी में बुआ के घर गए हुए, बुआ के घर, वो अंक आवाजों से इस तरह से महसूस कराया गया कि जैसे जैसे सारे रिश्तेदार बस अड्डे पर खड़े हैं, किसी को देर हो रही है, कोई गर्मी से परेशान है, किसी को भूख लगी है, मतलब कोई बस के रुकने के साउंड है उसमें, उनके हॉर्न, चाय, चना जोर गरम, और पैकेट, ये पैकेट, वो पैकेट, जैसे कि बस स्टेशन पर, बस अड्डे पर जैसे आवाजें आती है ना, वो सारी लोगों की आवाजें, तो मुश्किल होता है ना। अमेजिंग जॉब।

0: हाँ
1: सही
0: जी,
1: बात है।
0: और इसका सारा क्रेडिट भी नाटक के डायरेक्टर को ही जाता है कि बैकग्राउंड साउंड क्या जाएगा। कुछ बात तो हम डायलॉग्स में ही करते हैं, जैसे सुनो रिदम, बाहर बर्फ पड़ रही है, तुम अपने को अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है? तो हमने बताया कि भाई बर्फ पड़ रही है, अब ये भाव फील होना चाहिए, हैं? ठंड का एहसास करवाना, ठंडी हवा का झोंका जो खिड़की खोल जाए वैसा फील होना चाहिए, जैसे सुनो रिदम, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है, तुम अपने को अच्छे से कवर करके जाना। हाँ, तो इस तरह का फील आना चाहिए, समझे? एक्टिंग में और साउंड में भी सेम ऐसा वाला फील आना चाहिए। तो इस तरह से हमें हर भाव को व्यक्त करना होगा कि एक्चुअल में एक्टर फील क्या कर रहा है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर, कलाकारों और साउंड रिकॉर्डिस्ट को, समझे?
1: तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कुल मिलाकर ये टीम वर्क होता है।
2: हाँ, ऑफ कोर्स, टीम वर्क और टीम स्पिरिट के बिना तो ये संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: देखो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना पड़ता है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि नाटकों में ही 9 रस होते हैं जो साथ साथ चलते हैं।
1: करेक्ट।
3: हाँ, लेकिन दादी, एक वक्त ऐसा भी आया था ना जब रेडियो का अस्तित्व जो था वो खत्म होने की कगार पे था।
2: हाँ, शायद कुछ नया नहीं हो रहा था, फिर सोचा समझा गया और प्राइवेट सेक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया रेडियो FM। भाई तब तो रेडियो सुनने की बाढ़ सी आ गई। तभी तो मैं कहती हूँ कि आकाशवाणी दिन पर दिन जवान हुआ है। अपने 90 दशक पूरे करने के बाद भी आप रेडियो की आवाज, उसके प्रोग्राम्स में किसी भी तरह की बोरियत नहीं ढूंढ पाएंगे, और यही निशानी है हमेशा जवान बने रहने की। सुन रहे हैं आप?
0: सच कह रही हैं दादी जी आप, बिल्कुल। हमारी आकाशवाणी का कल्चर ही कुछ और है, खासकर हमारे नाटक तो एकदम ओरिजिनल और पारिवारिक होते हैं।
2: भाई, लोगों ने रेडियो से अपने बड़े बड़े करियर बना लिए।
0: हाँ।
2: उन आवाजों को पब्लिकली पहचाना जाने लगा, अब वो सेलिब्रिटी हो गए थे। आकाशवाणी में भी FM गोल्ड, FM रेनबो की शुरुआत हो चुकी थी और ये लोगों के फेवरेट चैनल्स बन गए। और हाँ, आकाशवाणी के प्रोग्राम्स का स्तर ऊंचे से ऊंचा होता चला गया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: पर ना तो यहाँ की भाषा बिगड़ी ना सुर बिगड़ा, ये तारीफ की बात है। आज भी आकाशवाणी का एक शिष्टाचार बना हुआ है।
1: अरे देखो तो कोई फोन बज रहा है।
3: कोई कौन? मैं ही तो जाऊंगा ना उठाने के लिए।
4: हेलो जी, जी हाँ, हाँ हाँ, जी जी जी, याद रहेगा। आप एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा इनविटेशन का। जी जी जी जी, मैं फोन नंबर शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, नो वरीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद लेकर आऊंगा। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद जी।
2: क्या हुआ, क्या हुआ रिदम, कौन है?
3: जो हमने नहीं सोचा था वही हुआ।
2: क्या, क्या हुआ?
0: बताओ ना, जल्दी बताओ।
3: आकाशवाणी ने सभी पुराने कलाकारों को बुलाया है।
0: क्या, सच में?
3: जी, उनका आदर सम्मान करने के लिए।
1: अरे वाह।
3: और क्यों ना हो, 90 वर्षों की अमानत है ये कलाकार, और इसके बाद वही लोग एक लाइव नाटक भी करेंगे अपने दर्शकों के लिए।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: रियली?
1: रुक्मिणी जी, मैं लेकर चलूंगा आपको। बिल्कुल
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: दादाजी, मैं जाऊंगा क्योंकि पास तो मेरे नाम का बनेगा।
1: अरे वो तो वक्त बताएगा कौन जाएगा। पर अभी चलो रुक्मिणी जी, एक नई साड़ी खरीद कर ले आते।
3: हाँ।
1: उस दिन जब आप सब कलाकार लोग बैठेंगे ना, रेडियो के 90 दशक के 9 रसों को जियोगे आप। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भाई?
2: माची, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो ने कितना बड़ा स्टार बना दिया अपने घर में।
1: अरे
2: पता, हम जब तक वहां थे तब तक हम वो वैल्यू ही नहीं समझ पाए। अब समझ आता है कि हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे रेडियो का और उसके नाटकों का भी।
0: दादी जी, आप थे नहीं, आप हो।
1: बिल्कुल सही।
0: तभी तो आपको इतना सम्मान मिल रहा है आज भी रेडियो में।
1: अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
2: अरे,
1: अरे भाई रिदम, तेरी चाय ना हो गई।

0: बल्कि खिचड़ी हो गई।
1: हाँ रीता,
0: और रुक्मिणी जी आप शांत हो जाइए, हम बाहर चलते हैं और आज सेलिब्रेट करेंगे।
2: हाँ,
0: तैयार हो जाइए,
2: ये बिल्कुल सही आइडिया,
0: सब लोग वी विल एंजॉय।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे विशेष नाटक 9 दशकों के 9 रस। लेखिका थी सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे रघुवेंद्र तिवारी, राजेश बख्शी, प्रज्ञा झा, मयंक मनिल मिश्रा, सुयश दीप सिंह, नितिन गुप्ता, वैभव पॉल, हर्षित सिंगल, ऋषि उनियाल, दिव्यांका ठाकुर, नेहा शर्मा, सलीम खान, अदिता चौधरी।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक 9 दशकों के 9 रस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म वंश से। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत मालिका तरन्नुम जहां के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में और साथ हैं श्रेया घोषाल।

कार्यक्रम गीत मालिका के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन चुनिंदा नगमे। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म वीर से। आइए सुनते हैं अगला गीत साधना सरगम की आवाज़ फिल्म साथिया से।

0: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा

है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है।

0: Border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ ड्रोन्स, रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वज़ीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने मरकज़ की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تالمیل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے۔

0: हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुल्हाए अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोछर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अलीग तआवुन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमत नामे पर जोर दे रहा है लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुणताई और कांग हाइजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़ुज़ फराहम करने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटरी

0: साइकिल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept, and instead of focusing solely on border security, we will

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म तानसेन से केएल सहगल साहब की आवाज़ में।

क्षमा फिल्म से ये गीत आइए सुनते हैं, फिल्म क्षमा फिल्म से ये गीत आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में।

बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों।

बच्चों सुन लो बात, जू ही बोल दूं एक दो तीन में, फुर से भेज दूं तुमको चीन में, जो बजाऊं मैं अपनी बीन को, चॉकलेट कर दूं जमीन को, ओ बच्चों आहा आहा, जू ही बोल दूं एक दो तीन में, फुर से भेज दूं तुमको चीन में, जो बजाऊं मैं अपनी बीन को, चॉकलेट कर दूं जमीन को, ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ, ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात।

शहजादी तंग हो। ओ बच्चों समझे, मेरे काबू में चार भूत हैं, चारों भूत रुस्तम के पूत हैं। मेरे भूतों से जीते जंग जो, उसका ब्याह शहजादी तंग हो। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों।

अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के 2 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार

0: साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मित वैता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव R. तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग फ्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF.

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 3 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended, and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। पेश है प्रोग्राम गज़ल गीत, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम जहाँ। कबूल कीजिए प्यार भरा आदाब, नमस्कार साथियों। कहते हैं कि ज़िंदगी की ये जो घड़ियाँ होती हैं, इसमें हमारे उन सांसों के बीच में एक अजब सा एक एहसास होता है, जहाँ तमाम तरह की बातें दिल में उभर कर आती हैं। कभी खुशियों की यादें भरी एक सौगात होती है, तो कभी गमों का एक कारवां सा दिल में एक टीस बनकर उठता है, और फिर याद आती है उस बेदर्द की, उस चाहने वालों की, जिसके लिए आपने तमाम जो है दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी ऐशो आराम की चीज़ें सब कुछ न्यौछावर कर दी, सब कुछ लुटा दिया, और कहीं ना कहीं वो आपको नहीं मिला। तो कभी भी इस बात के लिए भी बेसब्र ना हो कर अपना वक्त यूँ ज़ाया करिए, क्योंकि ज़िंदगी में सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, और जो ख्वाब पूरे हो जाएं वो ख्वाब नहीं होते, वो होती है सच्चाई, मोहब्बत की सच्चाई, दिल की सच्चाई। कहते हैं ना कि जब भी कभी आप अपने दिल के जज्बात को, अपने खुशियों को, अपने गमों को यूं ही बयान नहीं कर सकते, तो ऐसी ही कई अच्छी जो खूबसूरत गज़लें हम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एहसासों को धीमे धीमे बयां करती है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत एहसास को, ये खूबसूरत गज़ल फिल्म बाज़ार से, आवाज़ लता मंगेशकर और तलत।

कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, ताकत परवाज़ मगर रखती है। आप कितना भी सोच लीजिए, होना वही है जो खुदा ने चाहा है। तो कभी कभी सारी बातों को खुदा की मर्ज़ी समझकर, उनके कहते हैं ना कि हर चाहत जो है वो पूरी नहीं होती, और हर चाहत का जो अंजाम है वो भी खुशनुमा नहीं होता। तो कभी कभी हर ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो हमें ऐसे मिलता है कि वो आगे के लिए हमें ये यकीन दिलाता है कि जो होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है।

बाकी जब दिल बहुत उदास होता है तो कुछ ऐसी ही अर्जी लगती है ऊपर वाले से। कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, ताकत परवाज़ रखती है। और ज़िंदगी के सारे जो फ़लसफ़े हैं वो कहीं ना कहीं हमें खुद समझ में आने लगते हैं। और जब बात हो नज़रों की, तो हमेशा दिल और जज्बात और दिमाग में कुछ ऐसे आप जो है एक कहते हैं कि एक एहसास दिल में उतर आता है जब हम किसी की नज़रों को पढ़ लेते हैं। और नज़रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोग जो हैं किसी की नज़रों को नहीं पहचान पाते। और ऐसे में जब आप ज़िंदगी के उन फ़लसफ़ों को समझेंगे, ज़िंदगी के में जो भी आपके उतार चढ़ाव है उसे महसूस

मिटाए से नहीं मिटते ये यादों के मकान, ठहर गया है ज़माना जाने छूटा है कहाँ, चले गए हो मगर आज भी लगता है तुम्हारी खुशबू से महक रहा है सारा समा।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गजल गीत, और ये खूबसूरत गजल आपने सुनी फिल्म मौसम से।

प्रोग्राम गज़ल गीत में भी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गज़ल आवाज़ तलत अज़ीज़ की। आइए सुनते हैं अगली गज़ल हरिहरन की आवाज़ में।

गजल गीत के इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज़ में। और ये आखिरी गजल आप सभी के लिए बेहद खास है हमारी ओर से।

और इसी आखिरी गज़ल के साथ गज़ल गीत का ये प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। कलाकार हैं TV मनिक नंदन, राग पूर्वी कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का गायन राग पूर्वी कल्याणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। सुबह के 4:53 अड़तालीस सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी लीजिए योग भद्रासन और अश्वत्थासन की। 5:20 पर प्रसारित करेंगे आपके लिए एक देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:23। 6:40 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा चिंतन रामचरितमानस। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज बलजीत सिंह के गाए कुछ शब्द। गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 8:45 पर। और 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम धरती आकाश। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नौतपा का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति का संतुलन या चेतावनी। ये आप इससे कार्यक्रम में वार्ता सुनेंगे। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। कार्यक्रम

0: आपकी पसंद। सुबह 11:10 पर सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह, रूमा लैला, गुरदास मान की गाए कुछ गीत। कार्यक्रम सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। महिला कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा 12:10। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे 1:10 पर। आज की फिल्म है आरजू और कार्यक्रम एक ही कलाकार का समय रहेगा 2:30। आज कलाकार हैं परेश रावल। कार्यक्रम ब्रज माधुरी का समय रहेगा 3:00 और 3:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे नाटक सलोमी कड़ी। पांच बज कर 10 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम लोक रंजनी और इसके बाद 5:30 पर दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की प्रस्तुति होगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमार के राष्ट्रपति की म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला

एज आई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न।